नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 465.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे की 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: और ये था आज
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता से नहीं बल्कि उन उच्च आदर्शों से भी है जिन्होंने सदियों से मानवता को दिशा दी है। ये वो भूमि है जहां आस्था, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम एक साथ जीवन का आधार बनते हैं। आइए मातृभूमि के प्रति सम्मान और समर्पण के भावों के साथ सुनते हैं एक ओजस्वी देशभक्ति गीत।

हर शुभ कार्य का प्रारंभ विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्मरण से होता है। वे बुद्धि, विवेक और मंगल के अधिष्ठाता हैं। उनकी कृपा से मन में आत्मविश्वास जागता है और जीवन की राह में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। प्रस्तुत है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना करता यह मधुर भजन।

सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। उनकी पहली किरण केवल धरती को ही नहीं बल्कि मन और विचारों को भी नई चेतना से भर देती है। उनका तेज हमें निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा देता है।

भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब भी धर्म पर संकट आया, उन्होंने विभिन्न अवतार लेकर मानवता की रक्षा की। उनका स्मरण मन में धैर्य, विश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार करता है।

ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का आशीर्वाद जीवन को प्रकाशमान बनाता है। उनकी कृपा से वाणी में मधुरता, बुद्धि में विवेक और कर्म में श्रेष्ठता का भाव विकसित होता है। ज्ञान ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सुनिए माँ सरस्वती को समर्पित यह भक्तिमय रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। चिंतन में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धैर्य कठिन समय का साथी। आलेख है नीरज सालवी का, वाचक है सैयद आसिफ अली।
1: धैर्य कठिन समय का साथी। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में धैर्य बनाए रखना, जब तक कि परिस्थितियां बेहतर ना हो जाएं, और यह विश्वास रखना कि वे बेहतर होंगी। भले ही अभी हम वर्तमान असुविधा से इतने व्याकुल हों कि हमें यह दिखाई ही न दे कि परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम घोर निराशा के गहरे दलदल में होते हैं तो रोशनी का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा मन वर्तमान पीड़ा और बेचैनी के कारण ही इस दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन हमारा जीवन इस बात से स्वतंत्र है कि हमारा मन क्या देख सकता है या क्या अनुमान लगा सकता है। जब हम दुख झेलते हैं तो हम वर्तमान पीड़ा से आगे कुछ नहीं देख पाते, और अगर हम भविष्य की ओर देखने की कोशिश भी करें तो हमें और भी अधिक पीड़ा का ही अनुमान और भविष्यवाणी करनी पड़ती है। लेकिन यह तो बस हमारे असुरक्षित मन की आशंकाओं का नतीजा है। दुख से ग्रस्त मन हमारे जीवन की वास्तविकता का अनुमान नहीं लगा सकता। वास्तविकता हमारे मन की कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होती है। हमें बस धैर्य रखना होगा, अपने मन की अटकलों को नज़रअंदाज करना होगा और देखना होगा कि चीजें हमारी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर हो जाती हैं। जीवन का एक स्वाभाविक प्रवाह होता है, ठीक एक फिल्म की तरह इसमें हर तरह के दृश्य होते हैं, कुछ शानदार और कुछ कठिन, कुछ आनंददायक और कुछ नाटकीय। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में भी अपनी खुद की फिल्म जी रहे हैं, जिसमें हमारे अपने आनंददायक और नाटकीय दृश्य होते हैं। और जब हम अपनी फिल्म के किसी नाटकीय दृश्य का सामना कर रहे होते हैं तो हमें केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें बस इतना धैर्य रखना होता है कि हम उस दृश्य को सहन कर सकें और अगले दृश्य तक पहुंच सकें। फिल्म चल रही है और हर दृश्य क्षणिक है। हमारी फिल्म में हर दृश्य महत्वपूर्ण है और उसकी उपस्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वह हमें बेहद असहज, भयभीत और निराश कर दे। हमें हर दृश्य को अपने जीवन की फिल्म में अपनी भूमिका निभाने की अनुमति देकर उसका सम्मान करना चाहिए, और अनुमति देने का अर्थ है उसे शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझना, एक आवश्यक बुराई के रूप में हमारे जीवन की कहानी का एक आवश्यक तत्व। इसका अर्थ यह है कि धैर्यवान रहकर हम अपने साथ घट रही घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान परिस्थिति का सम्मान कर रहे हैं और उससे गुजरने के लिए पर्याप्त धैर्य रख रहे हैं। इसलिए धैर्य एक प्रकार की उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो जानती है कि यह समय भी बीत जाएगा। हालात बेहतर होने के लिए यह आवश्यक है और हालात बेहतर होंगे ही। मुझे बस धैर्य रखना है और कठिन क्षणों का सामना करना है। मुझे आशा नहीं खोनी है, ना ही वर्तमान घटनाओं से खुद को टूटने देना है, बल्कि शारीरिक या भावनात्मक हर दर्द को सहना है और यह जानना है कि एक नया दौर आएगा जो वर्तमान से बेहतर होगा। अपने जीवन की टेप को चलने दो जब तक कि अगले दृश्य ना आ जाएं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाओ और आने वाले क्षणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहो, बजाय इसके कि मैं बेहतर महसूस करने की कामना करूं, चाहे वह स्थिति अलग हो या चाहे वो समाप्त हो जाए। धैर्य एक आशावादी उपस्थिति के समान है। उपस्थिति का अर्थ है दर्द के साथ रहना, उसे बिना शर्त यहाँ और अभी मौजूद रहने देना। धैर्य का अर्थ है दर्द के साथ रहना, लेकिन यह भी जानना कि जब दर्द अपना काम पूरा कर लेगा और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो वह चला जाएगा। धैर्य जानता है कि हर अनुभव और अनुभूति किसी न किसी कारण से होती है, और वह कारण है हमारी मदद करना, हमारा मार्ग

0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख था नीरज सालवी का और वाचक थे सैयद आसिफ अली। खेती की बातों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समेकित कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर आपको जानकारी देंगी अनुराधा शर्मा।
1: सगड़ा किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा समेकित कीट न रोग प्रबंधन का बारे में, जिसके अंग्रेजी में के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या के संक्षेप में के IPM, समेकित कीट न रोग प्रबंधन। हमारे किसान भाई बहनों के ये बात बहुत अच्छा से मालूम है कि अच्छी खेती के लिए खाली उन्नत बीज, अच्छा उर्वरक ने सिंचाई पर्याप्त नहीं है। फसल के कीट ने रोग होने से बचानू भी उत्तो आवश्यक है, तो जो उत्पादन न गुणवत्ता दो ही बनेल रहे। कई बार देखने में आए कि हमारा किसान भाई बहन अपना खेत में थोड़ा सा भी कीट न रोग देखे तो बस उठी न जाए, न बाजार से रासायनिक कीटनाशक लेने आई जाए, न दे दनादन को छिड़काव शुरू कर दे। इकासी उनकी खेती की लागत बढ़ी जाए, पर्यावरण प्रभावित होए, ने कई बार कीट ने दवा जी है उका प्रतिरोधी हुई जाए तो उनको ज़्यादा विकास होना शुरू हो जाए। तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए हमारा वैज्ञानिक होने ने समेकित कीट न रोग प्रबंधन IPM की अवधारणा हमारे किसान भाई बहनों के बताई है। IPM काई होए एक बारा में थोड़ा सा मालूम कर ला। IPM को सीधो मतलब यो है कि कीट ने रोग न के पूरी तरीका से समाप्त करने को प्रयास किसान भाई बहनों के बिल्कुल नहीं करनू है, बल्कि उनकी संख्या के आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाई के रखनू है। और इका लिए पहला उनके जैविक, फिर यांत्रिक, ने उका बाद आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक उपाय उनके संतुलित न वैज्ञानिक तरीका से अपनानू है। अब ये जी IPM की पद्धति है नी, ई के कि इकी शुरुआत फसल बोना से पहले जो ही जानू चाहिए। सबसे पहला तो खेत के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज को चयन करनू, बीज बोना से पहले अनुशंसित जैविक ने रासायनिक बीजोपचार करनू, और इका बाद बीज जनित रोग होने से प्रारंभिक सुरक्षा मिले ऐसा बीज होने की बुआई करनू। IPM की दूसरी पद्धति में आए दूसरों महत्वपूर्ण उपाय फसल चक्र। एकज खेत में बार बार एकज फसल लगाने से कीट ने रोग बढ़ी जाए, फसल उनको क्रम यदि बदली बदली के हमारा किसान भाई बहन लगाए तो इको प्रकोप स्वाभाविक रूप से कम हो सके। तीसरो सबसे अच्छो उपाय खेत की स्वच्छता। खरपतवार, संक्रमित पौधाओं के अवशेष, रोगग्रस्त पौधाओं के समय पे खेत से हटानू, क्योंकि यहाँ ऐसा बहुत सारा कीट है जो ये इना पौधाओं पे अपनो आश्रय स्थल बनाई ले। और समेकित कीट ने रोग प्रबंधन मतलब कि IPM को महत्वपूर्ण सिद्धांत है खेत की नियमित निगरानी। हमारा किसान भाई बहनों के खेत में सप्ताह में कम से कम दो बार तो निरीक्षण करने जानू चाहिए। उनके पौधा उनके पत्ती होने के देखनू चाहिए, तना के देखे, फली होने के ध्यान से देखे। उनके ये समझ में आई जाएगा कि यदि प्रारंभिक अवस्था में कोई कीट या रोग होने की पहचान हुई जाए तो कम खर्च में वे उको नियंत्रण कर सके। और बहुत सारा आजकल देखो पीला नीला चिपचिपा ट्रे पाई रिया है, बाजार में भी मिली जाए बहुत सारा भाई बहनों तो इके घर में तैयार कर ले। फेरोमेन ट्रेप है, प्रकाश प्रपंच भी उपयोग में लाए है बहुत सारा किसान भाई बहनों। ये सब जितना भी तरीका है नहीं, ये कीट होने की निगरानी करने का उपाय है, और यदि इनकी निगरानी हुई जाए तो बहुत हद तक इनको नियंत्रण भी आसान हो जाए। IPM में अब बात है जैविक नियंत्रण की। जैविक नियंत्रण में ऐसा है कि प्रकृति में ऐसा बहुत सारा मित्र कीट है, सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक कीट होने के खुद खाई जाए न उनके हानिकारक कीट होने के नियंत्रित करी दे। जैसे उदाहरण का रूप में अपन समझा कि लेडी बर्ड बीटल जी है वे माहू जैसा कीट होने के खाई जाए, ट्राइकोडर्मा जैसा परजीवी कीट बहुत सारा हानिकारक कीट होने का अंडा होने के नष्ट कर दे, ट्राइकोडर्मा जैसो लाभकारी कवक जी है वो मिट्टी में जनित रोग होने के नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध हुई जाए। तो ये प्रकृति का जैसा मित्र कीट है, मित्र सूक्ष्म जीव है, जे अपने आप बहुत सारा हानिकारक कीट होने के नष्ट कर दे। पर यदि हमारा किसान भाई बहन होन बिना सोचे समझे बार बार जहरीला रासायनिक कीटनाशक को उपयोग करे तो उका से जहरीला कीट तो मरे से ही, पर उका साथ हमारा ये मित्र कीट भी नष्ट हो जाए और जैविक नियंत्रण को पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। तो यदि हमारा किसान भाई बहन होन अपना खेत की नियमित निगरानी करे, संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाए, खेत की स्वच्छता के बनाए रखे, न जैविक नियंत्रण के बढ़ावा दे और रासायनिक दवाओं को विवेकपूर्ण उपयोग करे तो उत्पादन लागत कम होए और पर्यावरण सुरक्षित रहे, फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनी। तो समेकित कीट न रोग प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक सोच है। आज हमारा किसान भाई बहनों से योज केनू है।

खेती की बातों में अभी आप सुन रहे थे समेकित कीट और रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रही थी अनुराधा शर्मा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान में आज का प्रसंग। आई श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7:20 पर योग निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर जगदीश जोशी। सुनहरे पल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 7:35 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कल के सितारे बच्चे हमारे। इसमें चर्चा का विषय है बच्चों के लिए प्राणायाम का महत्व और 2 अगस्त पिंगली वेंकैया के विषय में जानकारी, तिरंगे की डिज़ाइन, 2 अगस्त डायनासोर दिवस, इन सभी विषयों पर आपको जानकारी देंगी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। साथ ही होंगी कुछ कहानी कविता। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे। 9:15 पर सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं प्रकाश पारनेरकर और साथी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग भोपाली तोड़ी। 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस कार्यक्रम का हम अनुप्रसारण करेंगे। 10:05 पर फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि MH हॉटलाइन कार्यक्रम में नए श्रोता हमसे जुड़े और फोन पर हमसे बातें करें। हमारे फोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा 10:05 पर। 11:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर संग्रहालय से। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। तो ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के विवरण के पहले ये छोटा सा संदेश।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा 5:00 कार्यक्रम युववाणी से। 5:45 पर फिल्म संगीत। 6:30 पर प्रकाश पारनेकर और साथियों के सुगम संगीत का प्रसारण होगा। 6:30 पर इसमें आप सुनेंगे प्रकाश पारनेकर और साथियों की गायी चंद रचनाएँ। 6:45 पर लोक संगीत होगा। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना। साथी होंगे कुछ लोकगीत।

0: होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत के लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती ये नदिया ये रहना
3: और
4: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को भी मिले रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्य प्रदेश के एम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महाअभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रदेश का सबसे आदर्श मॉडल जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
1: जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दृष्टि से इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बाद जबलपुर मेट्रोपॉलिटन बनाने की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद करेंगे एक साल के अंदर हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ाएं। साथ साथ भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर यहाँ आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है, फर्नीचर बनाने वाले कुछ अच्छे कारीगर लोग हैं, इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर भी जबलपुर में बनाया जाएगा।
0: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रणाली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यार्थी केंद्रित, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित प्रवेश व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 31 जुलाई की स्थिति में 2001 महाविद्यालयों में 7,51,123 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिनमें 6,60,981 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा 5,24,048 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 65,840 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो 14.4% की उल्लेखनीय वृद्धि है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कल देवास में बताया कि देवास जिले के लिए यहां की मिट्टी और मिट्टी में मौजूद तत्व, जलवायु और पानी के साथ अनेक चीजों की उपलब्धता को देखते हुए हमने एक रोडमैप तैयार किया है।
3: भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से यहां की मिट्टी, मिट्टी में मौजूद तत्व, यहां की जलवायु, पानी और बाकी चीजों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया, उसका एक प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी एफपीओ और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू हो, उस पर हमने व्यापक पैमाने पर चर्चा की है।
0: प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर, झाबुआ, आगरमालवा, बैतूल और नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कई गतिविधियों का संचालन आरंभ किया गया। 7 अगस्त तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने तथा शेष पात्र पथ विक्रेताओं तथा इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा कल से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा शुरू किया गया है। ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों नगरी निकायों में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगन मॉर्निंग डिवेलो को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के शॉटपुट के F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने रजत पदक और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। जूडो में सागर की यामिनी मौर्य और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई दी है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गायक अशकिशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के ग्राम आंवला से चवली तक 4 लेन किए जाने वाले उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन विषय पर कल एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल कृषि उपज मंडी बड़ोरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मैहर शासकीय संगीत महाविद्यालय में कल मैहर मल्हार संगीत सभा का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर, प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को मिले रजत पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग निरोग। इसमें आज आप जानेंगे बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जानकारी देंगी डॉक्टर जगदीश जोशी।

0: नमस्कार श्रोताओं, योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा। इस विषय पर बात करने के लिए, हमें अपने अनुभव साझा करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ जगदीश जोशी जी। जगदीश जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: जैसा कि हम सभी अनुभव कर रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, कभी लगातार भी हो रही है, और सूर्य के दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं आजकल। तो ऐसे मौसम में हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
1: देखिए सर, अभी गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और बारिश आ गई है। सूर्य देवता कुछ अस्त अस्त से हो रहे हैं, तो इसी अवस्था में हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। तो हमको अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है। हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। यदि हम आसानी से पचने वाले आहार का सेवन करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप बारिश के मौसम में भी इस बारिश की फुहारों का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमारी हमारा इंतजार करती होती है।
0: ऐसा कहा जाता है कि बारिश के मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर क्षीण पड़ जाती है, ये किस वजह से होता है?
1: ये सर सूर्य के प्रभाव की वजह से होता है, क्योंकि इस मौसम में सूर्य की लुका छुपी चलती रहती है और सूर्य बादलों में ढका रहता है, तो उसी प्रकार से हमारी पाचन अग्नि भी सूर्य के अभाव में कमजोर हो जाती है और भोजन का पाचन नहीं हो पाता है।
0: तो फिर हमें क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए खाने वाले कि पाचन भी हो जाए और हमारा शरीर रोग मुक्त बना रहे?
1: देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या कही कि हम ऐसी आहार का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। जैसे हम हरी सब्जियों तो हमको खाना नहीं है, क्योंकि वो वाटर कंटेंट्स ली हुई होती हैं। तो इस समय गिलकी, लौकी, गवारफली, तुराई, करेला, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन करना है। और उसके साथ ही यदि दालों का सेवन कर रहे हैं तो आप दाल छिलके वाली हो, और यदि तुअर की दाल खाने का शौक है, राजमा खाना है, छोले खाना है, तो उसमें गले हुए आप मेथी दाने डाल दें तो वो आसानी से पच जाती है।
0: आपने कहा कि अगर इस तरीके का शौक है तो मेथी दाना डाल दें या हींग का इस्तेमाल कर लें। ऐसे मौसम में हमने देखा है कि लोग मंगोड़ी खाना पसंद करते हैं या पकोड़े तेल में तले हुए खाना पसंद करते हैं, तो क्या लोग इस स्वाद को वंचित करना चाहेंगे कि खाएंगे? आपकी राय क्या कहती है?
1: देखिए सर, इस मामले में आयुर्वेदिक बात कहता है कि बारिश के मौसम में भजिया खाइए। पर भजिया खाना मतलब क्या, पेट भर के भजिए?

0: खाना है। हम जो खाना खाते हैं उसके साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी तले हुए भजिए का आप सेवन कर सकते हैं, आलू बड़े का सेवन कर सकते हैं, पर बशर्ते वो घर के बने हुए हों, क्योंकि घर पर हम तेल को वापस बार बार रीयूज नहीं करते हैं, पर बाजार के जो खाते हैं हम उसमें तेल को बार बार प्रयोग किया जाता है और वो तेल गाढ़ा हो जाता है। तो यदि आप रोज बाजार के भजिए और कचौरी और इसी चीजें खाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपको हृदय रोग हो सकता है। तो इसके लिए भजिए खाइए, पर घर के खाइए और नाश्ते के रूप में खाइए।
1: जी, ताकि पूरा दिन पाचन के लिए शरीर को मिल सके। आपने ठीक कहा। इसके अलावा खान पान में और क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की हमारे भोजन सामग्री हो?
0: देखिए, बारिश के मौसम में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो बारिश में आप इस प्रकार का आहार करें जो आसानी से पच जाए, पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी बात एक सक्रियता बनाए रखें। हम क्या करते हैं कि पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, घूमने नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको फिजिकल तो एक्टिव रहना ही है। और दूसरी बात है कि खाने की मात्रा को सीमित करना है। यदि आप भोजन की मात्रा को सीमित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर भोजन का पाचन हो जाता है। और यदि आपका पाचन कमजोर है तो आप एक काम कर सकते हैं, भोजन के बाद 1 कप गर्म पानी, जैसे चाय पीते हैं इसे 1 कप गर्म पानी यदि पी लेते हैं तो आपका भोजन का पाचन आराम से होता है और आप कब्ज के शिकार नहीं होते हैं।
1: चाय से मुझे याद आया कि बारिश के मौसम में लोग चाय भी ज़्यादा पीने लगते हैं, तो क्या ये ठीक उपाय है चाय पीना?
0: देखिए सर, चाय यदि सीमित मात्रा में पी जाए और उसमें यदि अदरक का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग, अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग, लौंग का प्रयोग, इलायची का प्रयोग किया जाए तो 1-2 कप चाय पी जा सकती है। पर आप यदि अत्यधिक चाय पियेंगे तो आप एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे। और आपने देखा होगा अक्सर कि राखी के समय में, राखी कब आती है, बारिश के सीजन में आती है, अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, क्यों कि पित्त बढ़ जाता है। तो हमको चाय की मात्रा को सीमित करना चाहिए। और यदि चाय की मात्रा को सीमित हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, सब्जियों का सूप पीकर। यदि हम सब्जी का सूप पीते हैं तो हमारा पाचन भी अच्छा रहेगा और ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। चाय कब पीते हैं हम, जब शरीर में ऊर्जा कम महसूस होती है। तो इसी सीजन में आप भोजन के पहले यदि सूप पीते हैं जिसमें प्याज हो, अदरक हो, लहसुन हो, लौकी हो, टमाटर हो, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी चाय की इच्छा नहीं होगी और आप कम चाय से भी संतुष्ट हो जाएंगे।
1: जी, बारिश के मौसम में चूंकि बाहर निकलना कम हो पाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं बारिश के कारण, तो ऐसे में जो व्यायाम है उसके लिए कई बार जगह कम पड़ती है या समय कई बार कम हो जाता है, तो इसको व्यायाम की कमी को कैसे प्रतिपूर्ति की जाए, इसका कंपनसेशन कैसे किया जाए?
0: सर, इसका एक सिंपल तरीका है कि आप घर पर जो भी आपका स्पेस है, छोटा सा भले स्पेस हो, उस पर बैठ के आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। कपालभाति है, भस्त्रिका है ये। और दूसरी बात क्या होगी, प्राणायाम करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपका मन शांत होगा, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ यदि आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अनावश्यक गलत खाने से बच जाते हैं।
1: तो फिर बारिश के मौसम में कौन-कौन से प्राणायाम करना उपयोगी रहेगा जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और दूसरे लाभ भी प्राप्त हो सकें?
0: आपने देखा होगा अक्सर जब बारिश होती है तो मौसम में ठंडक आ जाती है, तो ऐसे समय कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम जरूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर की गर्मी बनी रहे और ऊर्जा बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: अब बात करते हैं कुछ योगासनों की। तो ऐसे कौन-कौन से योगासन हैं जो बारिश की ऋतु में उस समय के मौसम को ध्यान में रखते हुए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं?
0: बारिश के सीजन में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नाम से ही जाहिर है, सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य जैसी शक्ति देने वाला अभ्यास। उसमें 12 मुद्राएं होती हैं तो उससे आपकी शरीर की मजबूती बढ़ती है। इसके अलावा आप ताड़ासन कर सकते हैं, कोणासन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, भुजंगासन, शलभासन, और जो भी आप आसन करें उसको स्थिरता के साथ करें। जितना आप शरीर को स्थिर रखते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा।
1: जी, और हमने देखा कि बारिश के मौसम में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैलता है, कई तरह के वायरस के संक्रमण भी आ सकते हैं, फंगस बहुत लगती है, कई बार दीवारों में घरों के अंदर अगर कोई गीला कपड़ा रह गया तब भी फंगस इन्फेक्शन वहाँ से आ सकता है, तो ऐसे में क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए हमें बचाव के?
0: देखिए सर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी बाहर जाते हैं और गीले हो जाते हैं तो घर आके आप गुनगुने पानी से स्नान करिए। तो उससे क्या होगा कि बाहर का जो दूषित पानी है वो आपके शरीर पे प्रभाव नहीं डालेगा। अब इसके अलावा आपने जो बात की फंगल इन्फेक्शन की, जो अपन कपड़े पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स, कई बार हल्के गीले होते हैं तो उनको प्रेस के माध्यम से आप सुखा लें। कोशिश ये करें कि गीले कपड़े ना पहने। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो आप निश्चित मानिए

0: कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, आप आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करें तो छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन तो इसी गायब हो जाएगा, पर यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो छोटा सा फंगल इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर तकलीफ दे सकता है।
1: बारिश के मौसम में इन सब चीज़ों को प्रतिकार करने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए और अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के कौन कौन से उपाय हैं जिनको किया जा सकता है?
0: देखिए, बारिश के मौसम में आप पेट का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं जिससे पेट की स्ट्रेंथ बढ़े। इसके अलावा लीवर का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं। तो इन प्रयोगों से निश्चित तौर पर आपका सिस्टम अच्छे से कार्य करेगा और आप बीमार नहीं होंगे।
1: तो गर्म पानी को दिन में कितनी बार पिया जा सकता है और किन-किन समय पर पीना चाहिए?
0: गर्म पानी आप दिन भर पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही रुकावट है कि आपके पेट में छाले ना हो, आप हाइपर एसिडिटी के शिकार ना हो और आपको अत्यधिक गर्मी ना लगती हो। एक सरल भाषा में समझे कि आपके शरीर को अत्यधिक गर्मी ना लगती हो, और यदि अत्यधिक गर्मी लग रही है, आप हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं, गर्म पानी पियेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, पर यदि ये समस्या नहीं है तो आप आराम से कभी भी कितना भी गर्म पानी पी सकते हैं, 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक कोई तकलीफ नहीं होगी।
1: इस मौसम में क्या गीली मिट्टी का और जो पट्टी है उसका भी प्रयोग करना ठीक तरह रहता है?
0: देखिए सर, गीली मिट्टी का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है, पर यदि आपके पास सूखी मिट्टी रखी हुई है जिस पे बिल्कुल शुद्धता है, गंदगी नहीं है, तो उस मिट्टी को आप गला के उपयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी की पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? जब आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ हो और आपको ठंड से आप ठिठुर रहे हैं और आप बोलोगे नहीं हम तो मिट्टी की पट्टी रखेंगे तो तकलीफ देगी। तो पट्टी का प्रयोग शरीर के तापमान पर निर्भर करता है कि यदि आपके शरीर को गर्मी ज़्यादा लगती है, पेट में एसिडिटी है, तो आप बिंदास होके मिट्टी की पट्टी या ठंडी की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: अगर हम खान पान की बात करें इस मौसम में, तो प्राकृतिक चिकित्सा के मुताबिक कोई ऐसे विशेष पेय पदार्थ जो हमारी क्षमता को बढ़ा सकें, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए सर, बारिश में अक्सर आपने देखा होगा गला खराब होना, सर दर्द होना, हाथ पांव दुखना, इस तरह की समस्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दालचीनी, गिलोय के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इनका बढ़िया काढ़ा बना लें आप, और इसकी सीमित मात्रा का 2 से लेकर 3 दिन प्रयोग करें, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा जो छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़ को घी में आप सेक लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के रोज आधा चम्मच लीजिए। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि जो हरड़ नियम से खाए ताघर वेद कबू न जाए। तो यदि आपको पाचन संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रहना है तो आप बाल हरड़ का पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा शरीर को है। तो इसको जो आपने पेय पदार्थ अभी बताया दालचीनी का, इसको क्या नियमित तौर पर भी कर सकते हैं हम प्रतिदिन?
0: देखिए सर, जब आपको तकलीफ हो तभी आप काढ़े का प्रयोग करें, पर ऐसे कभी सभी चाय के साथ में आप दालचीनी ले सकते हैं। तुलसी का प्रयोग हमारे सिस्टम में है करने का, वो आप कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के पदार्थ को रेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो निश्चित फायदा होगा। और जब तकलीफ ज़्यादा है तो जो 4-5 मैंने आपको जो बताए खाद्य पदार्थ, उनका सेवन करके आप काढ़ा बना सकते हैं।
1: इन दिनों हम सुनते हैं कि पंचकर्म और षटकर्म लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्या बारिश के मौसम में इन दोनों को किया जा सकता है?
0: बिल्कुल किया जा सकता है, किसी अच्छे आयुर्वेद प्रशिक्षक के निर्देशन में आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित तौर पर शरीर शुद्ध होता है।
1: तो कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या वो जो कदम हैं, स्टेप्स हैं पंचकर्म और षटकर्म के होते हैं, उनको एक सामान्य भाषा में हम अगर
0: देखिए,
1: जानना
0: सामान्य
1: चाहें?
0: भाषा में समझे आप तो षट कर्म में कुंजर क्रिया होती है। यदि आपके शरीर का पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है तो आप गुनगुना पानी जिसमें नमक मिला हो वो पी के कुंजर क्रिया करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की उसमें वस्तियाँ होती हैं, आंखों के ऊपर तेल की वस्ती, पेट के ऊपर वस्ती, घुटने पर वस्ती, रीढ़ पर वस्ती, शिरोधारा, ये अलग अलग प्रयोग हैं। इनको किसी चिकित्सक के परामर्श और आपकी प्रकृति के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से प्रयोग किए जाने हैं।
1: प्रकृति से आपका क्या आशय है?
0: प्रकृति से मतलब यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या गैस बढ़ी हुई है या कफ बढ़ा हुआ है, ये 3 प्रकृतियां होती हैं मनुष्य की। इन प्रकृति के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी वस्ती या कौन सा षटकर्म किया जाना है।
1: जी, अगर आम आदमी जानना चाहे कि भाई मेरी प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, तो क्या कोई साधारण उपाय हमारे श्रोताओं को आप बता सकते हैं?
0: बहुत सरल सा उपाय है, यदि आपको ठंड लगती है, आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा बन रही है ना, आपकी पाचन अग्नि कमजोर है, तो आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। यदि किसी व्यक्ति को गर्मी बहुत लग रही है, गले में

एक चिकित्सा बारिश के मौसम में कैसे उपयोगी साबित हो, और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ जगदीश जोशी जी। अब अनुमति दीजिए ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: योग निरोग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जगदीश जोशी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।
1: सुनहरे पल।
0: सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत से, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम दो खिलाड़ी।

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में लीजिए, अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म का नाम बंदिश।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर?
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनहरे पल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम धरती।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम आक्रमण।

0: इसी गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: सुनहरे पल।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। प्रतीक्षा करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी

0: आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने

0: कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन चार अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कॉकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.

0: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे,
1: कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी दीदी। बच्चों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और अच्छे संस्कारों को सिखाने का एक प्यारा अवसर है। इस महीने बच्चों आप प्रकृति की सुंदरता, शिव पूजा और त्योहारों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाना चाहिए। बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे लगाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है प्यारे बच्चों। श्रावण मास में आप झूलों का आनंद लें गीत संगीत के साथ। यही वो महीना है जब हम नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों को मनाते हैं। एक बात और बच्चों, इस पावन महीने में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप प्रतिदिन करें। इससे मन एकाग्र होगा और ध्यान लगाने से बुद्धि तीक्ष्ण होगी। तो चलिए भगवान शिव की आराधना करते हैं।

0: बच्चों, भगवान शिव शंभू के आशीर्वाद तो हमने ले लिए और आइए अब रूबरू होते हैं शिव भक्त कुशाग्र लगनशील विद्यार्थी श्रेय जोशी से।
1: कल के सितारे बच्चे, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है दोस्तों आपका। आपके साथ हूँ मैं श्रेय जोशी, कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। दोस्तों, अगस्त का महीना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं, राष्ट्रध्वज लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान न हो। दोस्तों, आज 2 अगस्त है और आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रध्वज के निर्माता पिंगली वेंगैया का जन्म हुआ था। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और कृषि विशेषज्ञ भी थे। महात्मा गांधी के आग्रह पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन प्रस्तुत की, जो आगे चलकर तिरंगे के रूप में स्वीकार की गई। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पिंगली वेंगैया का नाम भारतीय इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? चलिए।

गीत हमने सुन लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जून को हमने राष्ट्रीय डायनासोर दिवस मनाया था और आज 2 अगस्त को हम डायनासोर दिवस के रूप में मना रहे हैं। आइए डायनासोर से जुड़ी कई रोचक बातें आपसे साझा करता हूँ। दोस्तों, डायनासोर का नाम ग्रीक भाषा में विशाल छिपकली होता है। इनका समय काल की बात करें तो विशाल जीव 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले में पृथ्वी पर रहते थे। दोस्तों, इनकी पहचान यह थी कि ये अंडे देते थे और इनके पैर पक्षियों की तरह सीधे होते थे। दोस्तों, इनके इतिहास की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं। एशिया में सबसे पहली खोजों में से एक 1828 में जबलपुर मध्य प्रदेश के पास हुई थी। लगभग 165 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर राज करने के बाद विलुप्त हो गए। दोस्तों, मजेदार थी ना जानकारी। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शीर्षक है छोटा डीनो और जादुई जामुन। एक घने जंगल में डीनो नाम का एक छोटा सा डायनासोर रहता था। डीनो बहुत दयालु था, लेकिन उसकी छोटी टांगों के कारण कोई भी बड़ा जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। एक दिन उसे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रसीले जामुन दिखे। डीनो उदास होकर अपनी लंबी गर्दन वाले दोस्त ट्रैक्सी के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे लिए वह जामुन तोड़ सकते हो? ट्रैक्सी ने तुरंत मदद की। बदले में डीनो ने उसे अपने चमकीले पत्थर दिए जो उसने नदी किनारे से इकट्ठे किए थे। दोनों ने मिलकर खूब मजे किए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्ची दोस्ती और मिल बांट कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनने में आनंद आया ना? चलिए अब कविता का आनंद ले। डायनासोर पर मजेदार और प्रेरणादायक कविता। करोड़ों साल पुरानी बात है, धरती पर उनकी ही राहत थी। विशाल कहे थे ताकतवर, जंगल के वे राजा बनकर। कोई था लंबा, कोई था छोटा, टीरेक्स का था सबसे मोटा। पहाड़ों जैसी उनकी चाल थी, उनकी दाढ़ कमाल थी। वक्त बदला और सब खो गए, डायनासोर अब इतिहास हो गए। रह गए केवल उनके निशान, जिससे जुड़ी है ये अद्भुत कहानी और ज्ञान। रह गए केवल उनके निशान, जिससे जुड़ी ये अद्भुत कहानी और ज्ञान। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता? चलिए अब एक सुनते हैं प्यारा सा गीत। चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम। दीदी, हम सभी यह गीत सुनना चाहेंगे। दुम दुम।

दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल आइसक्रीम सैंडविच डे हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन लोग तरह तरह के आइसक्रीम सैंडविच का आनंद लेते हैं, चाहे वनीला हो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या कोई अनोखा फ्लेवर। कुछ लोग इसे घर पर भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हैं। आइसक्रीम सैंडविच की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका से हुई थी और तब से यह दुनिया भर में लोकप्रिय बन गई है। इस दिन का उद्देश्य है गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा और मजेदार खाने का आनंद लेना और बचपन की मीठी यादों का ताजा करना। दोस्तों आइसक्रीम सैंडविच का मजा गर्मियों में तो आता है, लेकिन मैं तो सभी मौसम में इसका आनंद लेता हूँ। मम्मी और बुआ दोनों बहुत अच्छी आइसक्रीम सैंडविच बनाते है और आज तो मम्मी ने स्पेशल बनाई है। दोस्तों ये बताइए कलरिंग करना कैसा लगता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। दोस्तों ड्राइंग पेंटिंग करना मुझे फ्री टाइम में बहुत पसंद है। आपको यह बताना चाहूंगा हर साल 2 अगस्त को राष्ट्रीय रंग भरने पुस्तक दिवस नेशनल कलरिंग बुक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और बच्चों व बड़ों को रंगों की दुनिया में शामिल करना है। इसकी शुरुआत डोवर पब्लिकेशंस द्वारा वर्ष 2015 में की गई, जो रंग भरने की किताबें प्रकाशित करने वाली प्रमुख कंपनी है। रंग भरना केवल एक शौक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने का भी एक सरल उपाय है। आजकल व्यस्कों के बीच में यह गतिविधि लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह तनाव को कम

0: करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। मेरे दादा दादी कलरिंग करते हैं और मैं भी करता हूँ। सचमुच बहुत मानसिक शांति प्राप्त होती है। आप भी करिएगा। चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और मजेदार गीत।
1: अरे

बरसात में भीगना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ आया है सावन, तो चलो दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है सावन के बादल। सावन के बादल आए हैं, खुशियों की सौगात लाए हैं, रिमझिम रिमझिम वर्षा बरसे, धरती पर मोती बिखराए हैं, काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी हवा भी आए, मोर पंख फैला कर नाचे, गीत खुशी के सबको गाए, खेत खलिहान हरे भरे हो, फूलों में फिर खुशबू आए, सावन का यह प्यारा मौसम सबके मन को खूब भाए, सावन का ये प्यारा मौसम सबके मन को खूब भाए, सबके मन को खूब भाए। दोस्तों मेरी सावन की बादल वाली कविता अच्छी लगी ना, तो आओ अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ी सी अच्छी कहानी, ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, माँ घर का काम करती थी, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। एक दिन अर्जुन स्कूल से घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाकर देखा तो उसमें 20,000 रुपए, कुछ जरूरी कागज और एक पहचान पत्र था। अर्जुन के मन में एक पल के लिए विचार आया कि इन पैसों से वह अपनी किताबों और कपड़ों खरीद सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने माता पिता की सीख याद आई, बेटा मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अर्जुन ने पहचान पत्र पर लिखे पते की मदद से बटुए के मालिक को खोजने का निश्चय किया। काफी पूछताछ के बाद वह उस व्यक्ति के घर पहुंचा। बटुआ देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। दोस्तों उसने बताया कि उस पैसों से अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरनी थी, यदि बटुआ नहीं मिलता तो उसे बहुत परेशानी होती। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी अर्जुन को इनाम देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। अर्जुन की ईमानदारी की बात पूरे गाँव में फैल गयी। गाँव प्रधान ने पंचायत में अर्जुन को सम्मानित किया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने मन लगाकर पढ़ाई की और बड़ा होकर एक ईमानदार अधिकारी बना। उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और लोगों की मदद की। दोस्तों गांव के बच्चे अर्जुन को अपना आदर्श मानने लगे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चाई और अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। आपने सुना ही होगा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। दीदी हम सभी गीत सुनना चाहेंगे, श्रावण मास भी चल रहा है, सभी शिव भक्ति कर रहे हैं और करना भी चाहिए।

0: मेरी कहानी सुनकर आपको मजा तो आया ही होगा। मजे के बाद से याद आया, बारिश का मौसम, मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। आपको भी बारिश का मौसम पसंद होगा, तो आइए बारिश के मौसम के मजे और सावधानियों दोनों जानते हैं। ठंडी ठंडी हवा और सुहावना मौसम, हरियाली और सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बारिश के कागज की नाव चलाने का आनंद, गर्म चाय, पकौड़े और भुट्टे का स्वाद, और परिवार के साथ बारिश का आनंद लेना। बारिश के मौसम में सावधानियां, छाता या रेनकोट का उपयोग करें। बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े पहने। साफ और उबला फिल्टर किया हुआ पानी पिए। खुले या बासी भोजन से बचे। घर के आसपास पानी जमा न होने दे ताकि मच्छर न पनपे। फिसलने वाली जगहों पर सावधानी से चले। गंदे पानी और बिजली के खंभों या तारों से दूर रहे। बीमार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। तो दोस्तों, बारिश का मौसम खुशियां और ताजगी लेकर आता है। यदि हम थोड़ी सावधानी रखें तो इस मौसम का भरपूर आनंद सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ में एक और चीज यह कहना चाहूंगा, हमें सभी बड़ों का कहना मानना है और समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आए। दोस्तों, जब भी वक्त मिले अपनी हॉबी को समय जरूर दे, और हाँ, मम्मी पापा दादा दादी का कहना जरूर सुने। अपने शिक्षकों का भी आदर करें, तभी हम सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।
1: बच्चों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। इस वादे के साथ होगी आपसे मुलाकात। दुर्गेश नंदिनी दीदी को दे अनुमति। टाटा बाय बाय।
0: टाटा बाय बाय।
1: बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: सितारे बच्चे हमारे।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। प्रस्तुतकर्ता थी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

सुगम संगीत, माफ कीजिएगा, लोक संगीत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सखाराम सीताराम और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पारंपरिक लोकगीत से।

0: लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सखाराम सीताराम और साथियों की गाए निमाड़ी लोकगीत।
1: बचपन चिलियो जन प्रभु।

लोक संगीत में आप सुन रहे थे सखाराम सीताराम और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रकाश पारनेरकर की गाई चंद रचनाएं। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं बशीर बद्र की लिखी इस गजल से।

कभी यूं भी आ मेरी राह में। अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल सुगम संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं इब्राहिम अश्क की लिखी ये गज़ल। कलाकार है प्रकाश पारनेरकर।

इब्राहिम अश्क की लिखी और प्रकाश पारनेरकर की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग भोपाली तोड़ी।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सवेरे के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में वर्तमान में मानसून की गति धीमी है, रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान असमंजस का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले में प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पिछले दिनों जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के जल के अधिकतम संचयन हेतु फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण अनुकूल और लोकहितकारी कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यों की विधानसभावार मॉनिटरिंग करने और शेष बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अभियान के तहत आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी ने बताया कि सागर जिला जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 90% कार्य पूर्ण कर चुका है। सागर जिले में वर्ष 2026-27 में ग्रीष्मकालीन

एवं उड़द के उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा बीते दिनों मूंग एवं उड़द उपार्जन कार्य की समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि विपणन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन कार्य जिले में निर्धारित 22 केंद्रों पर किया जा रहा है। जिले में कुल 17,284 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें 13,995 किसानों द्वारा उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए गए हैं। स्लॉट बुक किए गए किसानों में से 9,269 किसानों से 45,957 क्विंटल मूंग एवं उड़द की खरीदी की गई है। इनमें 38,640 क्विंटल मात्रा रेडी टू ईट ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत 31,039 क्विंटल का परिवहन किया जा चुका है। जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त और सक्रिय है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जमीनी स्तर पर सही डेटा एकत्र किया जाए और पोर्टल पर उसकी एंट्री समय पर हो। महिलाओं की प्राथमिक जांच पूरी गंभीरता और पर्याप्त समय देकर करें। पिछले दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में प्राथमिक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान, स्क्रीनिंग और शीघ्र उपचार की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सागर, दमोह और पन्ना जिले के 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण समन्वयक डॉ सौरभ जैन ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं की नियमित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे। इससे रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, समय पर उपचार और सर्वाइकल कैंसर से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर के प्रांगण में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 43 नव प्रशिक्षित अधिकारियों ने 2 माह के कड़े बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। नव प्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ कानून के शासन को बनाए रखेंगे और राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पिछले दिनों युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की प्रथम बैठक अपर कलेक्टर अविनाश रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माय भारत की गतिविधियों, वार्षिक कार्य योजना, विभागीय अभिसरण और युवाओं के अधिकतम पंजीयन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभाग 7 दिनों में माय भारत के लिए अपने अपने नोडल अधिकारी नामित करेंगे। जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पात्र अभ्यर्थियों का माय भारत पोर्टल पर अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में माय भारत नोडल शिक्षक और कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माय भारत पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनहितकारी अभियानों में माय भारत स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी, आलेख विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था।
1: मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो।
1: तो श्रोताओं, जल्दी से अपने रेडियो सेट के पास से थोड़ा सा हट जाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे अच्छे से बात कर सकें, तो हम चाहते हैं कि जिन श्रोताओं का कॉल लग जाए वो थोड़ा सा रेडियो से दूर हो जाए और हमसे बातें करें। और ये भी हमारी आपसे गुजारिश है कि जिन श्रोताओं ने हमें पहले कॉल कर दिया है, कृपया वे दूसरे श्रोताओं को मौका दें, उन्हें फ़ोन करने का मौका दें। और नए श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम।
1: सर बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है?
2: राम गोपालपुरी वन से, देवली मान जागीर।
1: कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: देवली मान जागीर, राजगढ़ जिला। हाँ मैडम।
1: जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। और आज मित्रता दिवस है, तो आप सभी, हमारे सभी श्रोताओं को हम आकाशवाणी परिवार की तरफ से मित्रता दिवस की बधाई भी देना चाहेंगे। अपनी पसंद का गीत बताइए। जी धन्यवाद सर। हेलो।
2: कोई हसीना
1: जब रूठ जाती है।
2: हाँ।
1: शोले पिक्चर का गीत है शायद ये।
2: हाँ, हाँ, शोले का है मैडम।
1: अच्छा, तो कैसे आज सवेरे आपको ये गीत याद आ गया? कोई रूठ गया है आपसे?
2: नहीं नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं हो तो, बहुत बार काल की आज लग गया हो तो।
1: अरे आज लग गया, धन्यवाद।
2: हाँ, पहली बार काल लगा आज।
1: अरे कितने समय से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं?
2: अरे मैडम, बहुत दिनों से, साल दो साल से लगा रहे, पर पहली बार लगा आज।
1: अरे वाह, आज मित्रता दिवस पे देखिए आपका कॉल लग गया।
2: हाँ मैडम
1: जी। और देखी थी आपने शोले फिल्म? देखी थी?
2: देखते हैं मैडम कभी कभी, अच्छी है पिक्चर।
1: हाँ जी, एक ऐसी फिल्म है जो अपने पात्रों के अभिनय से, कहानी से, संगीत से, सभी तरह से एक 100% जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी फिल्म ना तो बनी है ना बनेगी, इस तरह की वो फिल्म है। सभी कलाकारों के अभिनय तो हमें याद है ही, गीत संगीत भी बहुत दमदार था उस फिल्म का। और उनके पात्रों को आप जानते हैं, नाम लेना चाहिए? जी
2: नहीं मैडम, इतना नहीं जानते।
1: अच्छा, तो आपके यहाँ पर बारिश की क्या स्थिति है?
2: मैडम बहुत कम बारिश है, तो फसल भी कमजोर है हमारे इधर तो।
1: बारिश बहुत कम हो रही है।
2: हाँ।
1: कहीं कहीं तो बाढ़ आ रही है, पर हमारे इधर इस क्षेत्र में बारिश कम है।
2: इंदौर हमारा से 180 किलोमीटर पड़ता, बाकी बारिश बहुत कम अपने एरिया।
1: नहीं, इंदौर में भी बहुत तेज बारिश नहीं है, जो बारिश चाहिए फसलों के लिए और आने वाले समय के लिए, तो वो बारिश अभी है नहीं। इंतजार कीजिए, जरूर होगी।
2: हाँ मैडम।
1: तो चलिए, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।
2: ठीक है मैडम।

0: तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: हेलो हेलो
2: मैडम नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है? हाँ
2: अनिल से।
0: सर आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही है।
2: अनिल
0: हेलो
2: अनिल
0: जी, कौचाल्य जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? कौचाल्य जी आपका आपकी रेडियो सेट से या तो आप दूर हो जाइए, बिल्कुल भी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नहीं सच में कौचाल्य जी मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो हेलो
3: हेलो नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
3: याद वो नहीं जो तन्हाई में आती है, याद तो वो है जो लाखों की भीड़ में आपको तन्हा कर जाती है।
0: अरे क्या बात है, आप तो शायर निकले।
3: मैडम आपके लिए तैयार किया था ना आपको पत्र में ईमेल भेजने के लिए कि बहुत दिनों से मैडम की याद आ रही है, वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे तो उनको बुलाया जाए, तो हमारे ऊपर वाले ने सुन लिया और आपको तुरंत बुला लिया ड्यूटी।
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं अधिकतर अभी बाहर से आने के बाद ड्यूटी कर रही थी, नाइट ड्यूटी मेरी लग रही थी और नाइट ड्यूटी में इमेज हॉटलाइन कार्यक्रम नहीं होता है। हाँ। तो आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है और मेरा भी सौभाग्य है कि मित्रता दिवस पर आप सभी मित्रों से मिलना हो गया।
3: जी वैसे क्या है, पहले सप्ताह के पहले रविवार को अगस्त माह में मित्रता दिवस मनाया जाता है, तो सभी दोस्तों को भी शुभकामनाएं इसकी हमारी ओर।
0: जी तो अपने पसंद का पहले गीत बता दीजिए।
3: पहले मैं अपना नाम बताया था मैडम।
0: जी
3: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: जी मैं आपकी आवाज पहचान गई थी रफी साहब।
3: हाँ
0: जी,
3: और बहुत मिस कर रहे थे मैडम हम आपको।
0: अरे धन्यवाद, आप जैसे श्रोता हैं तो हम जैसे कलाकार और भी आगे बढ़ते हैं जब आप प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं हमें।
3: जी
0: और हमें भी मन करता है कि हम कुछ अच्छा आपको सुनाएं रेडियो सेट के माध्यम से।

0: सरकारी हॉटलाइन, फोन इन प्रोग्राम और पत्रों पे जो आते हैं, सबसे ज्यादा हम इनको पसंद करते हैं।
1: अच्छा जी, तो अब हम भी आप जैसे श्रोताओं से गुजारिश करना चाहेंगे, जो बहुत पुराने हमसे श्रोता जुड़े हैं, कि नए श्रोताओं को भी मौका मिले, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप नए श्रोताओं को हमसे जोड़िए, इस कार्यक्रम से जोड़िए।
0: हम खुद चाहते हैं कि नए श्रोता जुड़े हैं, लेकिन ये जो श्रोता हम लगाते हैं ना, लगातार वही श्रोता लगा रहे हैं जिनके फोन लगते रहते हैं, और ये एक महीने का गैप भी नहीं देते ये लोग।
1: जी जी,
0: हम खुद चाहते हैं कि नए श्रोता जुड़े, लेकिन बार बार वही श्रोता लगाते रहते हैं। मेरे पास तो बहुत टाइम कम मिलता है, लेकिन अभी जिन जिनके फोन लगते रहते हैं ना, सब वही लगाते रहते हैं। अगर तभी नियम पालन करें तो अच्छा रहे।
1: बिल्कुल, सभी श्रोता आपको सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि यही हो, नए श्रोता हमसे जुड़े। और उससे क्या होगा, देखिए नए श्रोता जब मिलेंगे तो वो आपसे भी जुड़ेंगे, श्रोता समूह बढ़ेगा, श्रोताओं से दोस्ती बढ़ेगी।
0: जी, पालन करे तो अच्छा रहे, कोई भी पालन नहीं करे प्रोग्राम में मैडम।
1: तो चलिए अभी देखते हैं सावन के महीने का, पहले आप आनंद लीजिए।
0: जी जी,
1: और कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत

0: तो चलिए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार मैम,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में।
1: जी
0: जी, अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है सपने साजन के।
0: सपने साजन के,
1: हाँ
0: जी।
1: और उसमें गाना है शिकवा करूं या शिकायत करूं।
0: हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गीत हमें मिल जाए। और बताइए अपने बारे में।
1: बस आपके कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं।
0: अच्छा, ये गीत नहीं होगा तो कौन सा गीत पसंद करेंगे आप?
1: तो फिर आप मिलन फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: मिलन फिल्म का?
1: हाँ, सावन का महीना पवन करे।
0: अरे वाह, सावन के महीने में इससे बेहतर गीत नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इंदिवर साहब ने भी क्या खूब गीत लिखा है ये।
1: बिल्कुल। और जी। लता जी।

0: राजी और मुकेश जी ने
1: क्या गाया है,
0: सच बात है, बहुत सुंदर गीत है ये। और इंदिवर साहब की तो एक विशेषता थी
1: जी
0: जी, और मेरे ख्याल से इंदिवर साहब का गीत नहीं है, ये आनंद बख्शी का गीत है, क्योंकि मुकेश मुकेश मुकेश जी के लिए अधिकतर गीत इंदिवर साहब ने लिखे हैं, कुछ बेहतर गीत इसी तरह के, तो इंदिवर साहब का नाम हमारी जबान पे आता है, बाकी ये गीत आनंद बख्शी साहब का है। और सावन के महीने में इससे बेहतर गीत मुझे नहीं लगता किसी की फरमाइश हो सकती है, पर ये सावन थोड़ा सूखा सूखा नहीं लग रहा आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा सूखा तो लगेगा ही,
0: तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमने पेड़ पौधे खूब काटे हैं और धरती के सीने पर तो छेद हो ही रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की कमी तो है।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं
0: जी। आपके क्षेत्र में कैसा है पानी?
1: हमारे क्षेत्र में भी बारिश तो होती है पर रुक रुक के हो रही है, बारिश अच्छी नहीं हो रही, जितनी चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं हो
0: जी,
1: रही
0: जी। फसलों के लिए जो बारिश की आवश्यकता है वो बारिश नहीं आ रही है,
1: नहीं आ रही है
0: जी। अच्छा, आज मित्रता दिवस है, तो आप रेडियो सेट के माध्यम से अपने किसी मित्र को याद करना चाहेंगे जो आपको सुन रहा हो इस समय? कोई संदेश पहुंचाना, कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप अपने मित्र को?
1: खासतौर पर अगर रेडियो मित्रों की बात की जाए तो कोई एक मित्र की तो बात नहीं कर सकते,
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: अगर
0: जी.
1: एक मित्र की बात करेंगे तो फिर सभी को मतलब ऐसा लगेगा कि वैसे तो सभी हमारे मित्र हैं, रेडियो से जितने भी जुड़े हैं सभी मित्र हैं हमारे
0: जी,
1: तो सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और क्या।
0: तो चलिए मित्रता दिवस की शुभकामना के साथ ये बेहतरीन गीत

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: मेरी आवाज आ रही है आपको?
0: जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से हम तक पहुंच रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं कारुंगा छोटी सादड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: अरे राजस्थान से कॉल किया आपने, छोटी सादड़ी
1: जी, कारुंगा
0: काउंडा, ओके जी। कौन आपका नाम बताएंगे आप?
1: छोटी साल जी, हमारी तहसील है काउंडा गांव की।
0: जी जी जी, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम है रतनलाल सुथार।
0: रतनलाल जी
1: सुथार
0: जी, रतनलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में। आप लगातार वहां पर इंदौर के प्रसारण सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनता हूं, तभी तो मैं इच्छुक रहता हूं फोन लगाने में।
0: अरे वाह क्या बात है। तो कितने समय बाद आपका कॉल लगा?
1: मेरा फोन तो करीब करीब लग ही जाता है, महीने में दो तीन बार।
0: अरे तो ऐसा मत कीजिए, दूसरे दूसरे कलाकार दूसरे हमारे श्रोताओं को मौका दीजिए थोड़ा सा।
1: तो आपकी बात लंबे टाइम लगेगी आपकी बात।
0: बिल्कुल, आपको देखिए गीत संगीत सुनना है तो किसी भी श्रोता के माध्यम से आप सुन सकते हैं, और जी। हमारी यही कोशिश है और आप सभी श्रोताओं की भी यही कोशिश होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमसे जुड़ते चले जाएं।
1: जी जी जी, तो
0: जी आप बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: मतलब
0: जी
1: मेरे पास में रेडियो, मतलब उस समय उस जमाने में लाइसेंस बनते थे रेडियो के।
0: अरे
1: 1965 में
0: जी,
1: जब से मेरे पास में रेडियो है।
0: अच्छा, तो आपके पास बहुत पुराना मॉडल होगा रेडियो का।
1: बहुत खराब हो जाते हैं, चेंज करता रहता हूँ मैं।
0: हाँ तो आप अपने पास संभाल के रखिए, एक धरोहर है वो, एक धरोहर है।
1: लगाते रहता हूँ
0: जी जी।
1: तो यू खराब तो हो जाते हैं।
0: तो अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।
0: आया सावन झूम के, क्या बात है। तो चलिए आपका गीत आपके रेडियो सेट पर हम सुनाते हैं।
1: और नाम में लेना चाहूंगा मेरे बच्चों का, फातिह सुथार, आशीष सुथार, सुनील सुथार।
0: जी जी जी, तो चलिए उन सबको मित्रता दिवस की बधाई कहिएगा, और ये बेहतरीन नगमा आपके रेडियो सेट पर, आप सब झूमिए इस गीत के साथ।
1: जी जी
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हॉटलाइन,
0: हेलो एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
1: हाँ, मैं गजेंद्र सागर से बात कर रहा
0: हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सागर से।
0: सागर से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ
0: जी। कौन बोल रहे हैं?
1: गजेंद्र अहिरवार।
0: हाँ,
1: गजेंद्र अहिरवार।
0: गजेंद्र जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी बात करें उसके पहले अपनी पसंद का गीत बता दीजिए।
1: दिलवाले से बनता है जो तुम्हें चाहे उसके साथ आना।
0: ठीक है, दिलवाले फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे। आप नए गीत पसंद करते हैं ज़्यादा या पुराने?
1: 1994
0: अच्छा, ज़्यादा पुराने गीत आपको पसंद नहीं है?
1: हाँ, पुराने भी अच्छे लगते हैं।
0: जी जी जी, तो वहाँ पर पानी की क्या स्थिति है सागर?
1: पानी गिर रहा है मैडम।
0: गिर रहा है पानी?
1: हाँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल पानी नहीं है।
1: हाँ, इधर कल भी गिरा था, आज भी गिर रहा मैडम।
0: जी जी जी।
1: हाँ मैडम,
0: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आपका गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजेंद्र जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। हाँ
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका जाखड़े जी। क्या हाल है
1: हाँ जी
0: आपके?
1: हाँ जी, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है 15-20 रोज से। हालत
0: अरे क्या बात है,
1: हालत खराब हो रही है हमारी
0: वो मध्य
1: इधर।
0: प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है
1: हाँ,
0: जी।
1: हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अभी ये बारिश इंदौर भेज दे
0: बिल्कुल भेज
1: हमें।
0: दीजिए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं खेती खेती के जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पानी नहीं हो रहा है, तो
1: हाँ
0: अब देखिए ये तो कब आता है पानी इस तरफ, हम देखते हैं। कोशिश कीजिएगा,
1: हाँ
0: प्रार्थना
1: जी हाँ
0: कीजिए
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल।
0: जिस क्षेत्र में पानी की कमी है वहाँ ज़रूर बारिश हो। तो अपनी पसंद का गीत
1: हाँ
0: बताइए पहले।
1: हाँ मुझे अलबेला का गाना सुनना है, पुराना वाला, लता मंगेशकर का गाया हुआ।
0: अरे वाह, बिल्कुल अलग अलहदा पसंद है आपकी।
1: हाँ जी,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: पुराने गाने बहुत पसंद है, वो
0: और
1: नींदिया आजा
0: जी
1: आखियन में आजा
0: जी जी
1: नींदिया।
0: आप लगातार वहाँ पर इंदौर के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ जी, बीच बीच में सुनते हैं हम, मतलब ऐसा तो यहाँ आता नहीं है हमको, दूर है बहुत हम।
0: अच्छा, तो आपने ये मोबाइल ऐप जो हम सूचना देते हैं, मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड किया है मोबाइल
1: नहीं
0: में?
1: क्या है मैडम, हम ब्लाइंड पर्सन है, तो
0: जी
1: हमारे मित्र हमारे दोस्त रहते इंदौर में, वो भी ब्लाइंड है, तो वो रेडियो चालू कर देते हैं और वो फिर गाना हमको मोबाइल टू मोबाइल हमको सुनाते हैं।
0: अच्छा।
1: हमारे पास वो सही आधा वाला ही है मोबाइल,
0: जी
1: ये वो बड़ा वाला नहीं है।
0: तो आप क्या क्या करते हैं, गीत वीत गाते हैं आप? संगीत
1: नहीं,
0: पसंद है
1: गाने
0: आपको?
1: सुनने बहुत पसंद है पुराने, पर हम गा नहीं सकते, कारण हमारे भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, वो संगीतकारी थे वो,
0: अरे वाह,
1: तो हमको जी, अब वो एक्सपायर हो गए, 3 साल हो गए उनको जाके। हाँ
0: तो संगीत आपको पसंद है,
1: जी, पुराने गाने।
0: पुराने गीत आपको बहुत पसंद है। पुराने गीतों में आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने जो संगीतकार थे पुराने, वो
1: हाँ
0: जो गीत बना गए हैं और जो गीतकार जो पुराने जो गीत लिख गए हैं वो गीत अब नहीं
1: हाँ
0: बनते?
1: नहीं, अभी तो बहुत फर्क हो गया, वो तो जमीन आसमान का फर्क है अभी तो।
0: जी जी बिल्कुल, पहले के जो
1: हाँ
0: गीत बनते थे, जो सिचुएशन के हिसाब से जो फिल्मों में गीत रखे जाते थे और जो मेहनत है उसके पीछे गीतकार की, संगीतकार की, और संगीतकार के साथ जितने साजिंदे वहाँ बैठा करते थे, एक
1: जी
0: एक स्टूडियो में कितने कितने सारे जो साजिंदे होते थे, वो जो
1: हाँ
0: मेहनत करते थे वो मेहनत अब नहीं होती है। अब तो डिजिटल है सब, आप आके गा लीजिए और संगीत अपने आप उसमें फिट हो जाता है, और इस तरह के
1: हो
0: आजकल
1: जाता
0: गीत
1: है।
0: बनते हैं और वो बहुत
1: हाँ
0: समय
1: जी,
0: तक मार्केट में नहीं रहते। और जो पुराने
1: नहीं,
0: गीतों की आप बात कर रहे हैं वो हमेशा हमारे दिलों में बसे हैं,
1: ये अजर अमर गीत है, ये अजर
0: अजर और
1: अमर
0: अमर
1: गीत
0: हैं।
1: है।
0: और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें अजर और अमर बनाने में रेडियो सेट की बहुत भूमिका है, क्योंकि रेडियो से ही
1: बहुत बहुत
0: इस तरह के गीत, खासकर जो आकाशवाणी इंदौर से, मुंबई से, और जो जितने भी हमारे आकाशवाणी केंद्र हैं हिंदुस्तान में, वहाँ से जिस तरह के गीतों का प्रसारण किया जाता है, उस तरह के
1: हाँ
0: गीतों का
1: जी,
0: प्रसारण दूसरे क्षेत्र से नहीं हो पाता।
1: नहीं,
0: जी
1: तो ये गाना है आपके पास
0: जी जी तो मैं
1: उपलब्ध है ना?
0: आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, और इस गीत के साथ गुनगुनाइए आप।
1: जी जरूर, थैंक यू, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम, मोना जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी, आपका जी। स्वागत है एमएच हॉटलाइन में।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा राजा।
0: राजा जी। राजा फिल्म का कौन सा गीत?
1: किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी।
0: क्या बात है, अलका याग्निक।
1: जी
0: जी, और किस क्षेत्र में रहते हैं आप?
1: जी श्रीनगर, जिला महुआ, उत्तर प्रदेश।
0: जिला महुआ उत्तर प्रदेश, वहाँ से प्रसारण में कोई बाधा नहीं? वहाँ से सुनाई देता आपको अच्छे से इंदौर का प्रसारण?
1: ऐप से सुनते हैं, मोबाइल से।
0: मोबाइल ऐप से? मोबाइल ऐप तो इतना अच्छा है कि आप बाहर भी, इंडिया के बाहर भी अगर जाएंगे आप तो वहाँ भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है। जी तो आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर हम सुना रहे हैं, और फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिएगा सर कि 2-3 महीने बाद अब आप कॉल लगाएं हमें।
1: जी आपका भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।
0: जी जी धन्यवाद।
1: आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार बहन जी, नमस्कार
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है?
1: ग्राम सनोदिया।
0: ग्राम सनोदिया,
1: हाँ, जिला गुना।
0: जिला गुना,
1: और जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा है।
0: अच्छा मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: मित्रता दिवस की आपको बहुत सारी बधाइयाँ
1: जी। आपको भी और सभी मित्रों को,
0: सभी मित्रों को बहुत सारी बधाई। और अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।
0: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जी,
1: मेरे महबूब का यामत हो।
0: क्या बात है, किशोर दा का एक बेहतरीन नगमा जी। आपको बहुत पसंद है किशोर दा की आवाज?
1: किशोर दा की आवाज मुझको बहुत पसंद है जी।
0: और कौन कौन से गीत आपको, कौन से गीत याद आ रहे हैं आपको उनके?
1: जी गीत तो बहुत है, मेरे सपनों की रानी का वास्ते।
0: क्या बात है।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: अरे वाह वाह वाह, सब में मेरे मेरे आ गया है तो। जी
1: एक चतुर नार
0: बड़ी होशियार। क्या बात है।
1: किशोर दा तो किशोर दा ही है बहन जी, बहुत बढ़िया गाने हैं उनके।
0: तो ये मेरे महबूब गीत जरा गुनगुना के बताइए हमें।
1: नहीं बहन जी, बस इतना ही, गुनगुनाते नहीं आता है।
0: अच्छा, तो आपको बस किशोर दा की आवाज पसंद है और उनके पुराने गीत?
1: पुराने गीत
0: तो चलिए
1: जी, तो मैं कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज मित्रता दिवस है।
1: वही तो बात है
0: जी।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, और हमारे मित्र प्रेमलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा जी।
0: जी जी, लगातार बलवंत जी हमसे जुड़े रहते हैं। जी
1: जी जी, हमारे मित्र हैं और अध्यक्ष हैं हमारी टीम के वो। और शेख हैदर खान जी है सुराना जिला रतलाम से।
0: जी जी।
1: भगवान सिंह परमार जी है, केजरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, और हसीना भी मंसूरी है पालदाना का, इंदौर से।
0: जी जी
1: भाई बहन,
0: देखिए रेडियो रेडियो के माध्यम से कहां कहां से कितनी दूर दूर से आपको मित्र मिल गए।
1: आप जो मान लीजिए पूरे भारत में ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं है जहाँ
0: जहाँ आपके मित्र ना हो।
1: हाँ पूरे भारत,
0: तो आपके पूरे पूरे भारत में जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपका श्रोता समूह है, वो सब आपको सुन रहा होगा।
1: सुन रहा होगा
0: जी।

0: हेलो नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार,
0: मैं अनिल भंडारे सुधा मंदिर से बोल रहा हूँ।
1: अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में।
0: आज फ्रेंडशिप के आपको आपको बधाई।
1: आपको भी बहुत सारी बधाई अनिल जी। और क्या हाल है आपके?
0: मित्र यही कायम रहे, सदा कायम रहे, कामना करते हैं
1: जी।
0: आज फिल्म दोस्ताना का गीत सुना जाओ।
1: दोस्ताना का गीत,
0: किशोर कुमार मोहम्मद रफी का, बने चाहे दुश्मन
1: जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना
0: हमारा।
1: बिल्कुल सलामत रहेगा दोस्ताना।
0: जी
1: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आपका गीत और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।
0: थैंक यू।

0: तो चलिए आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए मोना ठाकुर को, इसी वादे के साथ कि जिन श्रोताओं ने आज हमें कॉल लगाए हैं कृपया वे 3 महीने बाद अब हमें कॉल लगाएं और नए श्रोताओं को मौका दें। एक बार फिर से हम अपने फ़ोन नंबर्स बताना चाहेंगे, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो आपके फ़ोन कॉल्स का और मन भवन में आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: एक चेहरे पर रोज गुजारा होता है, प्यार किसी को कब दोबारा होता है। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। कोशिश होगी हमारी ज्यादा से ज्यादा फोन रिकॉर्ड्स करने की, और श्रोताओं आपसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आपका फोन यदि लग चुका होता है तो आप कम से कम 10 दिन का इंतजार जरूर करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को भी मौका मिल सके इस कार्यक्रम में शामिल होने का। बहुत शुक्रिया यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करते हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं पहले फोन कॉल के साथ। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: अपना परिचय, बढ़िया हूँ, अपना परिचय दे दीजिए।
3: मैं जबलपुर बरेला से बोल रही हूँ, वंदना उपाध्याय।
2: जी बहुत स्वागत है आपका, पहला फोन कॉल आपका है। जी बताएं।
3: मेरा मेरा फोन है, मुझे खुशी हो रही।
2: जी
3: चलो, मेरा आज फोन लग गया।
2: हाँ, तो आप तो चलिए बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी।
3: मुझे सुना दीजिए वो क्या बोलते कौन सा गाना, एक रास्ता है जिंदगी क्या थम गए तो कुछ नहीं। मेरे भाई के जो को डेडिकेट करना चाहती हूँ, अमित तिवारी, उसने बहुत अच्छा भेजा था वीडियो में, तो मैंने बोली चलो मैं तेरे को डेडिकेट करूंगी ये गाना।
2: चलिए
3: उसके लिए मैं आज ये गाना भेजना चाहती हूँ। मेरी वो गोल्डी का बर्थडे है आज, उपलक्ष में भी उसको।
2: तो बिटिया है गोल्डी आपकी?
3: हाँ हाँ गोल्डी, आशिता तिवारी।
2: चलिए बहुत शुभकामनाएं बिटिया रानी को। बहुत धन्यवाद आपने
3: दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात की।
2: हमें भी बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, जय बजरंग रेडी के श्रोता संग बस स्टैंड बंडावली से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे। दीदी कैसी हो आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं
0: दीदी?
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है ना, बहुत अच्छा।

0: मौसम है, और चाय का तो खैर मौसम नहीं, 12 महीने चाय बहुत अच्छी लगती है ना
1: हाँ
0: जी। तो लक्ष्मण रखवा जी, आपका दूसरा फोन कॉल है हमारे पास में, ये बताइए कौन से फिल्म का कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज एक पिक्चर है बहार और फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है
0: जी,
1: ये सुनवा देना दीदी
0: जी।
1: और एक आध बारा नाश्ता भी, जलेबी रसगुल्ला केक में खुआएं आपको।
0: बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से बोला, हमारे मुंह में पानी आ गया और हमें स्वाद भी मिल गया आपका, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, आपकी पसंद हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करने की सुने। अति
0: जी, बहुत स्वागत है आपका। परिचय दीजिए आपका।
1: आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बहुत आनंद आ गया।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी है आपसे बात कर रहे हैं हम, और आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले तो।
1: जिला छतरपुर में बसा मनकारी है ग्राम, और थाना है महराजपुर। फूलचंद मेरा नाम, फूलचंद मेरा नाम। मेरे मन को गीत सुना दो, ये है आपसे काम। सुनहे नर नारी है, मंगन भय भारी है।
0: चलिए, आपका संगीतमय और आपका परिचय था, हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये बता दीजिए, आपका कौन सा पसंद का गीत है?

0: और मुझे लग रहा है कि नीतिका वर्मा जी शायद।
1: जी मैं नीतिका वर्मा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज। हाँ
1: जी, शुक्रिया जी, आपकी पसंद पूरी करेंगे हम। आप अपना पसंद का गीत बता दीजिए।
0: नीतिका जी बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, फिल्म का नाम है सौगंध। ओ सौगंध में है तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, पतझड़ सावन, इसमें सावन का भी जिक्र।

0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। मैम
1: बहुत स्वागत है विपिन कटारे जी, कैसे हैं?
0: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना भी चाहिए।
1: हाँ, सभी कुशल मंगल रहे, यही हम सबके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं।
0: जी बिल्कुल। और बताइए, आकाशवाणी भोपाल में सभी लोग?
1: सभी कुशल मंगल है। आप बताएं, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: वैसे तो गाने बहुत सारे याद आ रहे हैं।
1: हुँ?
0: और बारिश का महीना भी चल रहा है और आज आपसे बात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। फिल्म का नाम है 1942 एंड लव स्टोरी। और इसी में गाना है ना, रिम झिम तानु, और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया
1: जी।
0: बिल्कुल यही गाना सुना दीजिएगा और आपके लिए रहेगा, और कुछ एक दो दोस्तों के भी नाम लेना चाहूंगा।
1: बिल्कुल लीजिए
0: जी, आपके लिए है। और हमारे दोस्त हैं गुलू अहरवार हैं, और जगत सिंह जी हैं, राहुल हैं, और वंदना उपाध्याय जी हैं, और लक्ष्मण जयकवाल जी हैं, और सभी के साथ सुनना चाहूंगा मैम।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन कटारे जी, आपने फोन किया
0: जी। थैंक यू।
1: और आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: सनी बोल रहा हूँ।
0: सनी, पूरा नाम बताइए।
1: सनी तिवारी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? छत्तीसगढ़
1: छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ,
0: में कहाँ से?
1: बिलासपुर।
0: क्या पढ़ते हैं आप?
1: अभी हम 12th क्लास।
0: ठीक, कौन सा विषय है आपका?
1: वाहियों से पढ़ रहे हूँ मैं
0: आज गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी।
0: पसंद का गीत बताइए, फिल्म का नाम।
1: मूवी का नाम है गदर।

0: मैं निकला गड्डी लेके।
1: चलिए मैं निकला गड्डी लेके, तो आप कहाँ जाने वाले हैं गड्डी लेकर?
0: घूमने जाएंगे।
1: चलिए बारिश के मौसम में घूमिएगा मगर बहुत संभल कर, ठीक है? सावधानी जरूर रखिएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आपका परिचय?
0: जी मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ मैडम, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला स्टोर से।
1: जी
0: तो आज मैडम ये फोन करें गीत सुने हैं या बात आपकी गीत हमारे
1: हैं? जी फोन करें गीत सुने हैं, आपके पसंद का गीत बता दीजिए।
0: मैडम मीना कुमारी जी का जन्मदिन है
1: जी,
0: तो इन्हीं की याद में मुझे फिल्म चित्रलेखा का गीत सुनना है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओ।
1: जी
0: जी आप कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम नीतिका वर्मा है।
0: जी नीतिका जी कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया, बारिश वारिश के क्या हाल है भोपाल में?
1: बस कभी गिरता है कभी खुल जाता है,
0: यहाँ भी ऐसे ही चलता है।
1: हाँ, और कभी कभी ऐसा बरस पड़ता है कि घर से निकलना दूभर हो जाए।
0: हाँ, इसका भी अपना एक मजा है।
1: जी जी बिल्कुल, प्रकृति के हर मौसम का अपना एक आनंद होता है और उसे हमें स्वीकार करना भी चाहिए।
0: जी अभी अपन ने विगत दिनों इतनी गर्मी झेली है तो थोड़ा सा ठंडे होना भी जरूरी है, भीगना भिगाना।
1: बिल्कुल, ये धरती की प्यास नहीं बुझेगी तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी, है ना?
0: बिल्कुल सही है।
1: तो चलिए विवेक व्यास जी आपने फोन किया, बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैम जी, मैं अरविंद अग्रवाल
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप
1: जी? श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: आपका फोन कब लगा था पिछली बार सर?
1: याद तक नहीं, काफी दिन हो गए।
0: चलिए 10 दिन का हम एक अंतराल रखना चाह रहे हैं कार्यक्रम में, ताकि हमारे नए श्रोताओं को मौका मिलता रहे। सिर्फ इसलिए जानकारी के साथ साथ में ये सूचना भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि लगभग 10 दिन के अंतराल में आप यदि फोन करेंगे तो हमें खुशी होगी और आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं जी। आपने फोन किया है, बताएं आपकी पसंद
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा सावन को आने दो। लाइव में तो आपसे पहले भी काफी बार हो चुकी
0: जी। जी जी

0: हेलो।
1: बिना रुके बिना झुके और बिना थके जो निरंतर चलता रहता है वो हिंदुस्तानी कहलाता है। नमस्कार दीदी,
0: नमस्कार।
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और दीदी जी को सत सत राम राम भेंट कर रहा हूँ।
0: जी दिनकर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: और दीदी जी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा।
0: मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ सर।
1: जी दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कॉल को रिसीव किया और आपसे जो है अक्सर बात करने का मौका मिल जाता है।
0: हमारे लिए भी ये खुशी की बात है आपने फोन किया है। आप बताएं कि आज आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको
1: सुनते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं। और
0: बहुत शुक्रिया दिनकर जी, आपने फोन किया है, आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते मैम,
0: जी, परिचय दे दीजिए आपका। कौन बोल रही हैं?
1: खुशबू बोल रही हूँ, बीना से।
0: जी, खुशबू जी, बीना से बोल रही हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पर रहती हूँ।
0: रेडियो तो सुनती है ना?
1: मॉर्निंग प्रोग्राम सुनती हूँ मैम। आप कैसे हो?
0: हम बहुत अच्छे हैं। खुशबू जी, आज आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत बता दीजिए तो हम आपको सुनवाएंगे।
1: फिल्म का नाम है मूवी प्यार कीजिए,
0: जी
1: और
0: बोल,
1: लिरिक्स सॉन्ग है चलो मैं नैनीताल। नाम
0: गए हैं आप नैनीताल?
1: नहीं गए अभी, बिल्कुल
0: कल
1: जाएंगे।
0: मिलेगा आपको 11 बजे से 11:58 के बीच ये गीत बजेगा, है ना? सीक्वेंस कोई सी भी हो सकती है आपकी, ठीक? हाँ, ये रिकॉर्डेड है तो इसमें आपको ये आकाशवाणी आप ट्यून करते होंगे ना, रेडियो पर या मोबाइल पर?
1: हम जबलपुर लगाते हैं।
0: हाँ, तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण पूरी सभी किसी भी रेडियो स्टेशन को आप ट्यून करेंगे आपको मिलेगा,
1: जी, ओके।
0: है ना? जबलपुर पे भी मिलेगा 11 बजे से। सारे आकाशवाणी जो है वो भोपाल को ही ट्यून करते हैं, क्योंकि आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण जो है वो भोपाल केंद्र से किया जाता है।
1: ओके मैम,
0: जी, धन्यवाद।
2: ओके।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। फोन करेगी सुने मैडम।
1: जी जी पहले तो आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं दमोह से गिरधारी सेन बोल रहा हूँ जी। मैडम
1: जी,
0: मैम मेरे को गाना सुनना है माँ शेरा वाली का
1: जी। कौन सा?
0: सबसे बड़ा तेरा नाम और शेरा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम,
1: सुहाग फिल्म का गीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए आज कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं का तन से और मन से स्वस्थ रहना, आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं को नशे के खतरों से जागरूक रहने और उससे दूर रहने पर जोर दिया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान के दौरान हर रविवार को गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आज देशभर में 28,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 करोड़ युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। आज स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया की जयंती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पिंगली वेंकैया ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर आज भोपाल में विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश के निर्माण और विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ समारोह को भोपाल से संबोधित करते हुए यात्रा के सफल और मंगलमय आयोजन की शुभकामनाएं दी हैं। और भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना के तहत आज साधुराम धुर्वे एवं साथी बालाघाट द्वारा बैगा जनजाति कर्मा सैला नृत्य एवं अशोक मौर्य एवं साथी हरदा द्वारा काठी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की पसंद का, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल, अनामिका अवंतिका शिवालिका, पारसमणि वाद्य, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया मौसम फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, संगीत मदन मोहन का।

अगला गीत हमने लिया आमने सामने फिल्म से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत दिया है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। सुना चाहा इंदौर से लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी लीला मनन तानिया ने। बड़वास उज्जैन से ये पत्र आया, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली का। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का आमने सामने फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में है। गुलजार ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की खयाम ने। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये गीत हमने लिया है, जिसे सुनना चाहा है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश, धनंजय, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री। मानपुर से पत्र आया विजय, रानी, महिमा वैद्य, नीतू और इनके सभी साथियों ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया आंधी फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, गुलजार के बोलों को धुनों में पिरोया आरडी बर्मन ने, सुना चाहा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका प्रोनानिका, उत्कर्ष नेताम, आदर्श नगर मलोट से पत्राया राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और नवीन शर्मा का।

0: आंधी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे अब सुनिए संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे कामिनी काय कांतारिका भाग 18।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 18वां भाग। अब तक आपने सुना त्रिलोचन दोबारा अपनी सत्या दीदी को खोजने उज्जैनी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसिका ही उनकी सत्या दीदी हैं। यहाँ वे राजकीय उत्सव में रानी पिंगला के पार्श्व में खड़ी वैसिका को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। उधर चारुमित्रा राजा भर्तृहरि को उज्जैनी वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। अब आगे

पिंगलेश्वर द्वार के प्रहरियों ने धूल के गुबार में घिरे अश्वरोही रक्षकों के बीच में आते हुए दो रथों को देखा। उनकी मंद गति बता रही थी कि वो कहीं दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। निकट आने पर रक्षकों की एक टुकड़ी उनके साथ आती दिखाई दी। कुछ समय में आगे की रथ की ध्वजा स्पष्ट हुई, जिस पर दो नृत्य रथ मयूर चित्रित थे। मार्ग इस समय धूलाच्छादित होने लगता है और धुंधलका भी। पश्चिम के आकाश में एक मेघ खंड ने अस्तमान सूर्य को ढक लिया था, इसलिए सांध्य प्रकाश भी छन कर आ रहा था। एक अश्वरोही रथ के पास से द्वार की ओर आगे बढ़ा।

0: महामती देवी चारुमित्रा नगर प्रवेश की अनुमति चाहती हैं।
1: पिंगलेश्वर द्वार का यह प्रदान विनयपाल देवी चारुमित्रा का महिमामयी महाकाल नगरी में हार्दिक स्वागत करता है। देवी कहाँ पहुंचना चाहेंगी?
2: जाना तो हमें श्रेष्ठी नागदत्त के यहाँ है। देवी वसुंधरा को सूचना दे दी गई है।
0: हमारी स्वामिनी वसुंधरा देवी का आग्रह है कि देवी चारुमित्रा की उपस्थिति 2-4 दिन गोपनीय रहे, उनके आगमन को प्रचारित ना किया जाए।
1: अच्छा हुआ कि आपने सीधे मुझसे भेंट की और स्वयं मैंने ही आपका स्वागत किया। कोई और यहाँ नहीं है, आप जानते हैं बात फैलते कितनी देर लगती है, किंतु इस समय इनका आगमन उत्सव के समय तो आई ही नहीं थी। पूरा राज्य इनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
0: क्या पता अब महारानी को पुत्र जन्म की बधाई देने आई हो?
1: संभव है, किंतु नरेश तो अभी प्रवास में ही है।
0: हमें इन सबसे क्या लेना देना, ये जाने और इनका काम। ये रखिए आप।
1: ये स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मुद्रा ग्रहण करने की बात इधर उधर चली गई तो मुझ अकिंचन की तो आजीविका ही संकट में पड़ जाएगी।
0: क्या कहते हैं आप, कितना पुराना व्यवहार है अपने बीच।
1: सो तो है, तभी तो मैं आपका इतना सम्मान करता हूं।
0: आप तो हमारे अपने हैं। चलो बंधुओं। अरे यहां तो देवी चारुमित्रा का स्वागत करने देवी वसुंधरा स्वयं ही पुत्र सहित मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं।
3: आ जाओ चारु, महामात्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: मेरी अथवा उज्जैनी नरेश की?
4: तभी देवी चारुमित्रा के रथ से राजा भर्तृहरि भी उतरते हैं। उनका वेश राजसी या अवधूत का न होकर वणिकों जैसा है।
5: अरे आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई महाराज, मुझे मुझे ही बिना बताए चले गए थे। ये तो सोचा होता कि इस वृद्ध के झुके हुए श्लथ कांधे पर आपके विश्रुत कुल की ख्याति के अनुरूप इस पवित्र राज्य का भार वहन कर पाएंगे। मैं बहुत थक गया हूं महाराज, अब आप ही संभालें अपना राजछत्र और शास्ति।
6: अरे अरे क्या करते हैं महामात्य, आप आदरणीय और पूज्य हैं, मेरे लिए ही नहीं राज्य के लिए भी और संपूर्ण प्रजा के लिए भी। आपका स्थान वहां नहीं, इस पीठी पर है, बैठिए।
5: देव ये पीठी आपके लिए है।
6: पीठी उसकी होती है आर्य जो उसकी गरिमा बनाए रखे, बचाए रखे। आपने तो मेरी अनुपस्थिति में अवंती के राज्य को वर्ष भर से संभाला है। आपकी निष्ठा, शील, निर्वाह और उपकार प्रशंसनीय है आर्य, उसका प्रतिदान तो संभव ही नहीं।
5: देव अपने आगमन को आपने इतना गोपनीय क्यों रखा? यह अवंतिका कब से आपके दर्शन पाने को आतुर थी।
6: मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं महामात्य, जैसे यही कि उज्जैनी का शासन भर्तृहरि के बिना भी तो चल सकता था। जब भर्तृहरि नहीं था तब भी उज्जैनी थी, जब भर्तृहरि नहीं होगा तब भी अवंती का राज्य रहेगा।
5: निश्चय ही उज्जैनी के अतीत और भविष्य का होना भर्तृहरि पर आश्रित नहीं है, किंतु उज्जैनी का वर्तमान तो पूरी तरह भर्तृहरि से बंधा हुआ है महाराज, कार्य और कारण दोनों ही दृष्टियों से। अवंती का राज्य राजपुत्रों की क्रीड़ा का कंटुक नहीं है महाराज, ये महाकाल का प्रसाद है जिसे धारण करना होता है विनय से, शील से, पुरुषार्थ से।
6: आप राजा के कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं महामात्य, किंतु यदि कोई साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहे
5: तो उसे किसी साधारण मां के गर्भ से जन्म लेना होगा महाराज।
6: लेकिन

0: समय तक छुपा नहीं रहेगा। कल देवी वसुंधरा के द्वार पर भीड़ लगने लगेगी। देवी वसुंधरा राज्य की सम्मानीय और सरल महिला हैं। राज्य के प्रति उनकी निष्ठा समर्पित है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई असुविधा या चिंता हो। चारुमित्रा की व्यवस्था अन्यंत्र करनी होगी।
1: आर्य, चारुमित्रा को राजमहालय के अधिवास में भी तो ठहराया जा सकता है।
0: देव, इसके लिए महादेवी पिंगला से अनुमति लेनी होगी। आप चिंता ना करें, समुचित प्रबंध हो जाएगा। देव, प्रश्न पूछने की बलवती इच्छा है।
1: पूछिए।
0: बिना कुछ कहे सुने आप अचानक क्यों चले गए थे? इतने दिन कहां रहे? आपको लौटाने के लिए हमने इतने प्रयास किए, क्या कहीं से आपको पुत्र जन्म की सूचना भी नहीं मिली? आपकी अनुपस्थिति में अवंतिका का इतना बड़ा उत्सव फीका रह गया, मात्र एक औपचारिकता। मैं सोचता था कि आप सबसे पहले महादेवी पिंगला के बारे में पूछेंगे, पुत्र को देखने और गोद में लेने की उत्सुकता प्रकट करेंगे, किंतु
1: ये सब मैं आपसे कहूंगा, पूछूंगा भी, आपके सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर भी दूंगा महामहात्य, पर समय आने पर, अभी नहीं। अभी तो महाकाल को माथा नवाकर उज्जैनी को देखना चाहता हूं, फिर कुछ और।
0: महाराज, उज्जैनी अब उतनी निरापद नहीं रह गई है। आपके ना होने से दंड भय भी नहीं रहा और अपराधी अधिक सक्रिय हो गए हैं। राजपुरुष ही बाहुबलियों को संरक्षण देने लगे हैं। अब आप आ गए हैं, देखिए कि ये वृत्त पूर्ण रथ कैसे राजचक्र को अपनी स्वाभाविक गति में लाता है।
1: महामात्य, आप अपने को बार बार वृद्ध न कहा करें। आपकी दृढ़ता और क्रियाशीलता पर किसी भी युवक को ईर्ष्या हो सकती है। सर्वप्रथम मैं देवाधिदेव महाकाल के सम्मुख मस्तक टेकने जाना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे ना?
0: महाराज, इन दिनों न जाने कितनी आंखें मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीमंतों के गुप्तचर मेरी हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं। मैं अपने दो अति विश्वस्त अनुचरों को आपके साथ भेजूंगा। उन्हें यहां कोई नहीं पहचानता है, वो आपकी ही भांति वणिक भेष में होंगे।
2: राजा भर्तहरि से दिशा ज्ञान लेकर महामात्य रक्षक दल को साथ लेकर नीलगंगा के बस्ती घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। नदी पार करके आगे महामात्य और पीछे सैनिक चलते हुए एक झोपड़ी के द्वार पर आ पहुंचते हैं।
0: कोई है यहां? अनिरुद्ध?
3: कौन है? यहां कोई अनिरुद्ध नहीं रहता, आगे देखो।
0: अरे, अनिरुद्ध तो यहीं रहता है, उससे कहो महामात्य आए हैं।
3: पूज्यवर को सेवक का प्रणाम।
0: अरे अरे,
3: आप क्यों पधारे? बुलवा लेती सेवक को।
0: ये किशोर वही वीर है ना जो 20 कोस जाकर सूर्यास्त तक वापस आ सकता है?
4: हाँ देवता, मेरा नाम कंद है।
0: अच्छा अच्छा, रास्ता दो, तुम्हारी इस आक्रामक मुद्रा में कोई प्रवेश कैसे कर सकता है?
4: पधारे देव।
5: प्रणाम देव, यहाँ तो आपके खड़े होने लायक स्थान भी नहीं है।
0: सौभाग्यवती रहो पुत्री, मैं अनिरुद्ध को लेने आया हूं। एकाएक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आ गया है।
5: आदेश करें, हम किसी काम आ सके ये हमारा सौभाग्य होगा।
0: अंतापुर में कोई असुविधा तो नहीं है?
5: देवी वैसिका मेरा हर समय ध्यान रखती हैं। उन्होंने मुझे महादेवी के कक्ष की झाड़ पोछ का काम सौंपा है। इस तरह सब कुछ परीक्षित हो जाता है। यूं मैं दिन भर द्वार के आसपास ही रहती हूँ।
0: और तुम्हारी सुरिका?
5: अंतःपुर में वही मेरी संगनी है हर समय।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,

0: फिर चले अनिरुद्ध। बेटी हम निकलते हैं, कुछ पूछना चाहोगी?
1: ये धृष्टता नहीं करूंगी, आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु थोड़ी सी उत्सुकता अवश्य है।
0: तो इतना जान लो कि महाराज उज्जैनी आ पहुंचे हैं, किंतु उनका आगमन अभी गोपनीय है, अनिरुद्ध उनकी सुरक्षा में रहेगा।
1: महाराज, वो तो हमारे पूज्य पाहुने हैं देव, अनिरुद्ध उनके लिए कुछ भी कर सकता है।
2: पूज्य आज्ञा दे तो मैं भी दादा के संग चलूं, सैनिक का काम कर सकता हूं मैं।
0: अरे तुम तो वीर सैनिक हो, पर यहाँ वृंदा अकेली रहेगी, रक्षा के लिए कोई पुरुष तो होना ही चाहिए ना?
2: सो तो है।
3: अनिरुद्ध को अपने साथ लेकर महामात्य देवी वसुंधरा के आवास पर महाराजा से भेंट करने की प्रत्याशा में पहुंचे। कक्ष में देवी वसुंधरा, उनके पुत्र और देवी चारुमित्रा के अतिरिक्त एक व्यापारी और उपस्थित था। महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़े। महामात्य के स्वागत में ये सभी उठ खड़े हुए। महामात्य की उत्सुक दृष्टि महाराज को यह वहां खोज रही थी और साथ ही औपचारिकता का वो निर्वाह भी कर रहे थे।
0: महाकाल की नगरी अवंती राज्य की राजधानी में कला प्रवीण विदुषी देवी चारुमित्रा का स्वागत है।
4: देव की ख्याति सुनी थी, आज दर्शन पाकर कृतकृत्य हुई।
5: सुना है देवी चारुमित्रा कवि भी हैं? क्या ही सुखद हो कि इसे देखने और सुनने का अनुभव हमें काव्य के माध्यम से बताएं।
6: अद्भुत होगा यह, आप क्या कहती हैं मातुश्री? देवी चारुमित्रा स्वीकार करें तो?
4: आर्य किसी चिंता में है?
0: देवी का अनुमान किसी सीमा तक ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि आप सभी के साथ यहां महाराज के भी दर्शन होंगे, और वो यहां नहीं है, मैं यही सोच रहा था। आप इसे चिंता भी कह सकते हैं।
6: अर्थात महामात्य असहमत नहीं है, देवी चारुमित्रा को सुने, इस स्थिति पर वह क्या कहती हैं?
4: दूरेपि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम करणेव तृप्ता न तु चक्षुषी मे तयोर विवादम परिहर्तु कामा समागतोहम तव दर्शनाय।
7: साधु साधु साधु साधु।
6: कृपा कर अर्थ भी स्पष्ट करें।
3: श्रेष्ठी पुत्र ने पद का अर्थ जानना चाहा तो महामात्य की दृष्टि कक्ष में उपस्थित व्यवसायी पर जा ठहरी।
0: महानुभाव, आपसे मेरी ये प्रथम भेंट है, देवी वसुंधरा ने भी परिचय नहीं करवाया, क्या आप देवी चारुमित्रा के साथ पधारे हैं?
5: कदाचित मेरी उपस्थिति महामात्य को रुचिकर नहीं लगी।
0: उपस्थित तो आप हैं ही, देवी चारुमित्रा से आपका आग्रह आपकी काव्य मर्मज्ञता को भी व्यक्त करता है, अतः उचित ये होगा कि आप ही इन पंक्तियों पर प्रकाश डालें।
5: अर्थ यही है महामात्य, कि आपका यश और ख्याति दूर से सुनकर कान तो तृप्त हो गए नेत्र नहीं। इस विवाद का परिहार करने की इच्छा से मैं तुम्हें देखने आई हूं।
0: पद अच्छा है, अर्थ भी अच्छा है, किंतु इससे भी अच्छा है आपका गूढ़ वेश। आपको अब कोई चीन नहीं पाएगा, आप नगर भ्रमण के लिए अब निकल सकते हैं, ये विश्वस्त सैनिक आपके साथ रहेगा। सैनिक,
8: तुम सिर ऊंचा करो। सैनिक, तुम पैठार गांव के अनिरुद्ध हो ना?
0: हाँ महाराज, आपने पहचान लिया, ये वही है।
8: बंधु, हमारी भावच वृंदा कहाँ है? शची कैसी है? ग्रामणी वीरभद्र और अन्य सब कैसे हैं?
9: महाराज, आपको मेरा स्मरण है, मैं धन्य हुआ। हम वनवासियों की स्मृति आपको

0: है, पैठार गांव कृतार्थ है। वृंदा तो हमारी जीवनी शक्ति है, और शची के भाग्य को क्या कहूं। उसे आस है कि उसका अवधूत एक दिन उसके पास वापस लौटेगा।
1: बंधु, लौटता वो है जो कहीं दूर जाता है। शची तो हर गैल घाट ऊंची नीची पगडंडी पर हर कहीं मेरे साथ है। ये उसकी दी हुई लकुट को देखो, पैठार ग्राम में शची ने मुझे सौंपी थी, सदा मेरे साथ का संबल बन गई है ये।
0: ये तो हमारे कुल की लकुट है। वृंदा इसे रात बरात नदी नालों के लिए अपने साथ रखती थी।
1: शची कैसी है निरुद्ध?
0: स्वस्थ ही मानिए महाराज, बाट जो रही अपने अवधूत की। वर्षा बीती, शरद ऋतु गई, बसंत और फिर ग्रीष्म का जाना, पावस कहाना, न जाने कितने दिन बीते। संध्या होते ही उसकी आंखें उज्जैनी से आने वाले मार्ग पर टिक जाती हैं। रात गहराने तक वो वहीं एक टक बैठी रहती है। स्मृति

0: अब हमें चलना चाहिए महामात्य। इतने ही दिनों में क्या से क्या हो गया इस कनक प्रगा उज्जैनी को। राज्य की स्थिति देख रहे हो अनिरुद्ध, मेरे पास केवल आज रात का ही समय है। यहां अधिक समय तक मेरा होना अप्रकट नहीं रहेगा। प्रजा निश्चय ही त्रस्त होगी, क्योंकि सर्वत्र लंपट लंपाक और कल्लांच प्रभावशाली हो रहे हैं। जिन पर रक्षा और सुशासन का दायित्व है वो निर्लज्ज होकर धन संग्रह में लिप्त हैं। आह अवंती
1: महाराज,
0: बंधु तंत्र की सभी अच्छाइयां बुराइयां ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। प्रजा को इस अराजकता में धकेलने का अपराधी मैं हूं।
1: अपने आप को दोष न दे महाराज, एक बार उज्जैनी लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा।
0: बंधु मधुपान की इच्छा है?
1: इस समय देव की सुरक्षा का दायित्व है मुझ पर।
0: दो एक चषक।
1: आपको सुरक्षित आवास तक पहुंचाकर मैं पूरा भांड स्वीकार कर लूंगा, किंतु किंतु अभी तो आप क्षमा ही करें।
0: सामने पान ग्रह देख रहे हो अनिरुद्ध, दूर दूर तक विख्यात। वस्तुतः ये श्रेष्ठियों श्रीमंतों अस्पदों का मनोरंजन स्थल है। इसमें प्रवेश अत्यंत व्ययसाध्य है। स्वर्ण से नीचे की मुद्रा तो यहां चलती ही नहीं। आओ उज्जैनी का सामंती पहलू भी देखें अनिरुद्ध, आओ।
2: श्रेष्ठी कहां से पधारे हैं?
0: सौराष्ट्र से।
2: पधारिए, आपका स्वागत है। इस और पधारी श्रेष्ठीवर, यहां विराजे।
0: कोई अन्य पीठिका नहीं है, वस्तुतः ये दिशा मेरे लिए अनुकूल नहीं है। उस ओर भी तो पान पीठ रिक्त है।
2: आपके लिए वहां बैठना अनुकूल नहीं होगा, वह राजन्य है। कुमार विक्रम राजा के अनुज कब क्या व्यवहार कर बैठे, हमारे लिए तो सभी सम्मान्य है।
0: किसी मान अपमान का दोष मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बणिक हूं अतः भाग्य भी रूबी। वहां आसन स्वच्छ करें और दो चषक यवनी मद के उपलब्ध कराएं।
2: सम्मानित कुमार, यह सौराष्ट्र के सार्थवाह हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो यहां बैठ जाएं। जैसी आज्ञा हो।
3: तीन चषक कहके की दाखा और उस हरित परिधान वाली तनमंगी के हाथों शिकता करो। मुझे तो लगता है कि महाराज या तो दस्युओं के हाथ बढ़ गए या शत्रुओं के। मुझे तो अब उनके जीवित होने में भी संदेह है।

0: कहीं बंदी होते तो कोई ना कोई सूचना मिल जाती।
1: इतने दिनों तक राज सिंहासन का खाली रहना भी उचित नहीं है महाराज। राज परिषद में यह प्रश्न भी उठना चाहिए।
2: अनेक सामंतों का भी यही मत है, किंतु महामात्य का तर्क है कि अभी ना तो कोई बाहरी संकट है और ना ही किसी सैन्य अभियान की आशंका, इसलिए
0: वो धूर्त महामात्य इच्छा होती है कि उस बुढ़े का सिर काट कर गढ़कालिका पर चढ़ा दूं।
1: शांत रहें कुमार, शांत रहें, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं।
3: महामात ने राजमहालय में अपने विश्वस्त अनुचर नियुक्त कर रखे हैं, वहां केवल क्रीत दासी वैसिका का आदेश चलता है। वो दासी आस पदों की उपेक्षा करती है, उनका अपमान करती है।
0: कुछ भी कहो विजय सेन, वो दासी मुझे आकर्षित करती है, एक चुनौती सी देती है।
1: कुमार के लिए भला क्या संभव है। आप चाहें तो अभी पकड़ लें जाकर उस दासी को, कौन रोक सकता है भला आपको। महाराज तो है नहीं, अब आप ही तो स्वामी हैं अवंती के। फिर दासियां तो होती ही हैं स्वामी को सुख देने के लिए।
0: सुनो, वैसी का अब दासी नहीं है, रानी पिंगला ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया है और राज पुरोहित ने उसे अपनी पुत्री माना है और राज्य की सम्मानित नागरिक है। ऐसे क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कैसे नहीं मानते। कुमार विक्रम के प्रस्ताव को अभी चलो।
3: कृपया उन्मत्त ना हो कुमार, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मेरे आवास पर चलकर सोचते हैं कि करना क्या है।
0: अरे करना क्या है, वैसिका के पास चलना है और क्या है, चलो चलो।
2: ओह, स्वामी ने तो मदिरा चखी भी नहीं, दूसरी लाऊं?
4: नहीं, मन कहीं खिन्न सा हुआ है। ये राजत्य पुरुष अभद्र ही नहीं लंपट भी है।
2: बड़े लोग हैं, हम तो सेवक हैं, क्या कर सकते हैं। स्वामी यदि द्यूत कक्ष में मनोरंजन करना चाहते हैं तो वहां लिए चलता हूं, और ये मदिरा पात्र भी दूर नहीं है द्यूत कक्ष, मात्र आंगन पार करना है, कदाचित वहां स्वामी की खिन्नता दूर हो सके।
5: जिस प्रकार कुमार विक्रम की बातें सुनने के लिए भर्तहरि इस मध्यपीठ पर आए थे, उसी भांति दो व्यक्ति उनकी निकट की पीठ पर आकर बैठे थे और कनखियों से भर्तहरि को देख लेते थे। भर्तहरि जान गए थे कि ये कूट पुरुष हैं जो उन पर दृष्टि रख रहे हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 18वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कलाकारों का भूमिका सहित।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी कायकांतारे की 18वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प

0: अभियान का शुभारंभ करते हुए आज कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं का तन से और मन से स्वस्थ रहना और आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं के नशे के खतरों से जागरूक रहने और उससे दूर रहने पर जोर दिया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान के दौरान हर रविवार को गतिविधियां आयोजित होंगी। आज देश भर में 28,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 करोड़ युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ समारोह को भोपाल से संबोधित करते हुए यात्रा के सफल एवं मंगलमय आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। भारी बारिश के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा मौसम में सुधार होने के बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बहाल कर दी गई है। खंडवा में गायक किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के महिला सभा अंक में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ फलाहारी व्यंजन। बहनों, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। यह केवल भोजन ही नहीं बल्कि बच्चे के लिए पहला टीका भी है, जो उसे अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। इसी महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। जन्म के बाद शिशु का संसार पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर होता है। ऐसे में माँ का दूध उसके लिए संपूर्ण आहार है। इसमें पानी, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रोगों से लड़ने वाले प्रतिरक्षी तत्व उचित मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि जीवन के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देने की सलाह दी जाती है। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई अन्य आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। सखियों, विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु के लिए अमृत के समान होता है। यह बच्चे को निमोनिया, दस्त, संक्रमण तथा कई अन्य बीमारियों से बचाता है। बहनों, स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद माँ का शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। इतना ही नहीं, स्तनपान माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को भी गहरा बनाता है। जब माँ अपने शिशु को गोद में लेकर स्तनपान कराती है, तब केवल पोषण ही नहीं बल्कि स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का भी संचार होता है। आजकल अनेक प्रकार के

0: बाबंद दूध बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वे माँ के दूध का स्थान नहीं ले सकते। माँ का दूध हमेशा ताजा, स्वच्छ, सही तापमान पर और पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। कामकाजी माताओं के लिए भी स्तनपान संभव है। वे अपने दूध को स्वच्छ तरीके से निकालकर सुरक्षित रख सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को पिला सकती हैं। बहनों, 6 माह पूरे होने के बाद बच्चे को घर का नरम और पौष्टिक पूरक आहार देना शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। भेंट वार्ता में डॉक्टर राम कुमार चौधरी से भेंट कर रही हैं श्रीमती हेमलता चौधरी।
1: कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो उसका प्रथम आहार माँ का दूध ही होता है। माँ के दूध में वह ताकत होती है कि उससे बच्चा हृष्टपुष्ट, ताकतवर और तंदुरुस्त बनता है, स्वस्थ बनता है। इसी के लिए माँ के दूध को अमृत के समान बताया गया है। और क्या कुछ विशेषताएं हैं माँ के दूध में, यह जानने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राम कुमार चौधरी जी को। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं शासकीय जिला चिकित्सालय शिवपुरी में। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत के लिए हमने जो विषय लिया है वह है कि शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। तो इस विषय पर हम यही आपसे बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि माँ का दूध, जिसे कि अमृत तुल्य कहा जा रहा है, वह किस तरह फायदेमंद है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिससे कि वह एक बच्चे के लिए उसे सेहतमंद बनाता है और उसके लिए फायदेमंद हो जाता है।
2: नवजात शिशु के जन्म के समय जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक स्तनपान है, स्तनपान के द्वारा बच्चे को संपूर्ण पोषण मिलता है, जो संपूर्ण पोषण माँ के दूध द्वारा मिलता है, जिसको हम अमृत कहते हैं। वास्तव में ये दूध बच्चे के लिए अमृत ही है। हम उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, दूध पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको वो पोषण मिल सके और बच्चा एक्टिव रहे।
1: जी, यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि जल्दी से जल्दी, अर्थात जो पहला दूध होता है माँ का, पीला गाढ़ा जो दूध होता है, वो बहुत बहुत ही अधिक पौष्टिक होता है। अच्छा, इस तरह की एक भ्रांति होती है कि बहुत सी माताएं जानकारी के अभाव में, कुछ भी मान लीजिए, वो दूध नहीं देती हैं, या उनके साथ में जो उनकी निर्देशक मार्गदर्शक होती हैं वो मना करती हैं उस दूध को देने के लिए कि भाई वो बहुत समय से जमा हुआ स्तनों में एक गंदा पदार्थ है। तो इस तरह की ये भ्रांति दूर करने के लिए आप थोड़ी सी समझाइश हमारी बहनों को जरूर दें।
2: नहीं, वास्तव में वो दूध अमृत ही है बच्चे के लिए, और वो कोई गंदगी नहीं होती है। उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पानी की मात्रा और विटामिंस होते हैं जो कलेक्टेड रहते हैं पहले। वो दूध प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को पिलाना ही चाहिए। इस काम के लिए जो है ना, हमारा अस्पताल का स्टाफ भी एक्टिव रहता है और इसके लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसमें उनके परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनको बताया जाता है कि किस तरह से ये बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि यह जो माँ का प्रथम दूध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और इससे बच्चे में जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होती है और वो स्पष्ट बनता है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक माँ जो स्तनपान करा रही है, वो अपने शिशु को एक तो कब तक उसे स्तनपान कराना है और कब कब कराना है, कितनी बार कराना है, ये भी आप विस्तार से हमारी बहनों को बताएं।
2: जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सकता है हम स्तनपान शुरू कराएं और उसको लगातार 6 महीने तक उस दूध के अलावा कुछ नहीं देना है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। सिर्फ दूध ही पिलाना है, माँ का दूध ही पिलाना है, और उसको हर 2-3 घंटे के अंतराल पे पिलाना है। 24 घंटे में कम से कम 10 बार उसको दूध पिलाना है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि अक्सर हम देखते हैं, देखने में आता है कि माएँ तभी दूध पिलाती हैं जब बच्चा रोता है, क्योंकि वे समझती हैं कि उसे भूख लगी तो वो इंगित करता है और रो करके जाहिर करता है, तो ऐसा उनको नहीं करना है।
2: ऐसा नहीं करना जी, हर 2-3 घंटे के अंतराल पर उनको दूध पिलाना है,
1: भले ही बच्चे की मांग हो अथवा ना हो, उसे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहना है। बहुत सही बात आपने हमारी बहनों के लिए ये बताई कि वे इस बात को ध्यान

0: में रखें कि उन्हें बच्चे को दूध पिलाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, इसी के लिए हमारे पूरे देश में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह भी मनाया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह कैंपेन चलाया जाता है ताकि हमारी जो दूध पिलाने वाली धात्री माताएं हैं वे अपने स्तनपान के महत्व को समझें और बच्चे को समय पर दूध पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सी माओं को यह भी एक अपने चिंता रहती है कि भाई दूध पिलाने से कहीं हमारे शारीरिक सौंदर्य में कोई कमी आ
1: नहीं
0: जाएगी
1: नहीं
0: या किसी तरह की कोई कमजोरी आएगी, तो ये भी आप उनकी भावना को निर्मूल करने के लिए कुछ बताएं।
1: नहीं ऐसी कोई कमी नहीं आएगी उनको, बल्कि और अच्छा है माँ के लिए। जिस दूध को बच्चे को पिलाने के लिए उनको बार बार तैयार करना पड़ेगा, रात में उनकी नींद खराब होगी और शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, अच्छे बदलाव होते हैं। जैसे
0: जी
1: कि एक और स्टडी में आया है कि अगर माँ पूरे तरीके से बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको कैंसर की संभावना कम रहती है,
0: बिल्कुल, बहुत
1: ब्रेस्ट
0: अच्छी बात,
1: कैंसर कम डेवलप होते
0: जी
1: हैं,
0: जी बहुत
1: उसको
0: अच्छी बात
1: मानसिक
0: बताई।
1: तनाव भी कम झेलने पड़ेंगे, रात में जगना पड़ेगा। ये तो प्रिपेयर्ड दूध है, उसको कुछ नहीं करना, ना गर्म करना, ना छानना, ना कुछ करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
0: हाँ, यानी आप हमारी बहनों को यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल निडर होकर के स्तनपान कराना है और बल्कि उनके स्वास्थ्य में और बढ़ोतरी होगी ये
1: बढ़ोतरी
0: सोच करके
1: होगी।
0: उनको स्तनपान कराना है। दूध पिलाते समय कुछ बातें भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कभी कोई माता लेटे लेटे ही स्तनपान कराती है या गोद में लेकर के, तो किस तरह कराना है, थोड़ा सा ये भी हमारी बहनों को आप बताने का कष्ट करें डॉक्टर साहब।
1: माँ अगर स्टेबल है, ठीक है, वो बैठ सकती है तो कोशिश करें कि वो बैठकर ही स्तनपान कराए, और बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा ऊंचा रखे। जिससे क्या हो गया कि उसके मुंह में दूध नहीं रहेगा बच्चे के मुंह में, और वो कान में जाने का डर नहीं रहेगा,
0: डर
1: नहीं तो
0: नहीं रहे,
1: कान का संक्रमण हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन बहुत उसको मालूम होना चाहिए कि बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा रहेगा तो पूरा दूध उसके गले में से होकर सीधा जो है ना पेट में ही जाएगा, मुंह में नहीं भरा रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी
0: कि प्रयास यही करें कि बैठ करके स्तनपान
1: बैठ करके
0: कराएं
1: दूध
0: ताकि
1: पिलाएं,
0: उसके कान में किसी तरह का कोई संक्रमण ना होने
1: संक्रमण
0: पाए
1: ना।
0: और बच्चा अच्छी तरह से दूध पी सके, उसका पेट भर सके। अब हम ये जानना चाहेंगे कि दूध जो है वो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूर्ण आहार है, अमृत तुल्य है, तो ये दूध बच्चे को पूरी तरह से प्राप्त हो, यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि माँ के स्तनों में इतना दूध बने कि बच्चा अच्छी तरह से अपना पेट भर सके और उससे पौष्टिकता प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको अपने भोजन में आहार में क्या क्या शामिल करना
1: जी
0: होगा।
1: जैसा कि पता हम जानते हैं कि यदि माँ स्वस्थ नहीं होगी तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसको माँ की वजह से उसको दूध भी नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। तो
0: बिल्कुल
1: इस बात की जानकारी हमको एंटीनेटल पीरियड से ही रखनी पड़ेगी। जब पेट में बच्चा रहता है तभी से हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा पूरे खान पान का, उसको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिले, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिले, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले,
0: जी
1: हरी सब्जियों का मिश्रण हो उसके पास, पर्याप्त मात्रा में दालें मिले जिसकी वजह से उसको प्रोटीन मिले, तो वो स्वस्थ रहेगी। जब वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी वो खुद स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और जब माँ स्वस्थ होगी तो उसको पूरा का पूरा दूध मिलना मिलेगा ही, ये निश्चित
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल,
1: उसको
0: बिल्कुल
1: भरपूर मात्रा में दूध मिलेगा और बच्चे का पेट भरेगा और बच्चे का पोषण होगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो स्तनपान के लिए जो तैयारी है वो गर्भावस्था के काल से
1: गर्भावस्था
0: ही
1: से
0: प्रारंभ हो जाती है और तभी से हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनको अपने खान पान का ध्यान रखना होता है, उन्हें पूर्ण पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां और सभी विटामिन युक्त जो भी भोजन है वो लेना चाहिए। अपने जो भी चिकित्सक से भी परामर्श लेती हैं उसके अनुसार जो वो डाइट जिस तरह की बताते हैं उस तरह से वो उसको अनुकरण करते हुए लें तो निश्चित रूप से उनको स्तनपान कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके स्तनों में पर्याप्त दूध उतरेगा। और यह भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे 6 माह तक आपने कहा कि केवल स्तनपान कराना है, इस बीच में बच्चे को पानी भी नहीं देना है, कि पानी दिया जा सकता है कभी शिशु को?
1: माँ के दूध में इतना पानी, पर्याप्त पानी होता है जो बच्चे के पोषण के लिए जितना जरूरी है उसकी जरूरत के हिसाब से उतना पानी उपलब्ध होता है। अगर एक्स्ट्रा उसको पानी ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है,
0: जी
1: ना दें तो ज्यादा अच्छा है।
0: जी, बहुत सही आपने
1: दूध ही
0: बताया,
1: पर्याप्त है उसके लिए,
0: हाँ माँ का दूध ही
1: माँ का
0: पर्याप्त
1: दूध
0: है।
1: ही पर्याप्त है।
0: जी, तो और हमारी बहनें और किन बातों का ध्यान रखें अपने स्तनपान के दौरान, वे अपने बच्चों को और किस तरह से अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, इस बारे में आप थोड़ा हमारी बहनों को
1: बच्चे
0: बताएं।
1: से पहले मैं कहना चाहूंगा परिवार के उन लोगों से जो उस माँ के साथ रहते हैं कि वो माँ का ध्यान पहले रखें,
0: जी
1: माँ का अच्छे से पेट भरें, उसको अच्छे से खाना खिलाएं, 3 टाइम 4 टाइम जितने दोबार भी वो खाना चाहती है उसको भरपेट खाना खिलाएं, उसको दूध पिलाएं, हरी सब्जियां दें, और जो उसके तहत जो उसको आयरन और कैल्शियम मिला हुआ है वो निश्चित मात्रा में और निश्चित टाइम तक दें उसको। उसके बाद माँ के लिए मैं यही कहूँगा कि माँ ये ध्यान रखे कि बच्चे को 2-3 घंटे के अंतराल पर दूध पिलाए, वो देखती रहे बच्चा पेशाब जा रहा है बार बार, और जब बच्चा पूरी तरह से दूध उसका मतलब संतुष्ट बच्चा हो जाएगा, संतुष्ट तब पता चलेगा जब बच्चा अपने आप दूध छोड़ देगा, दूध पीने के बाद वो सो जाएगा, बढ़िया नींद ले लेगा, पेशाब करेगा, इससे ये संकेत हैं अच्छे उसकी ग्रोथ के कि बच्चे को पेट भर रहा है अच्छे से।
0: जी जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय, कराने के पश्चात थोड़ा सा उसको डकार दिलाने का प्रयास करें।
1: जी जी जी, इसको हम बर्पिंग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। होता क्या है, इसमें बच्चे को दूध पिला के कई लोग लिटा देते हैं, तो जब उसके बाद जब बच्चे को डकार आती है तो वो दूध पुनः उसके मुंह में आ जाता है, मुंह में आने के बाद वो धोखे से कहीं सांस की नली में भी चला जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको कंधे से लगा के हम उसकी पीठ को थपथपाएंगे, तो बच्चे को तब तक थपथपाएंगे जब तक उसको डकार ना आ जाए, डकार आने के बाद हम बच्चे को लिटाएंगे तो ये मुंह में दोबारा दूध आने की संभावना नहीं रहेगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने बातचीत की कि माँ के दूध में क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, किस तरह से माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए, कब तक स्तनपान कराए, और वो अपने भोजन में क्या क्या चीजें शामिल करें, ये सभी बातें हमने विस्तार से की आपसे। कुछ और जानकारी जो हमारी बहनों के लिए आवश्यक है वो हम और आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे मान लिया 6 माह तक तो पूर्ण आहार है दूध, उसे कुछ भी नहीं देना है, लेकिन 6 माह पश्चात कुछ और पूरक आहार बच्चे को देना जरूरी हो जाता है, तो वो किस तरह से देना है माँ को, यह भी आप बताने का कष्ट करें।
1: जी जी जी, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ माँ का दूध देना है
0: जी।
1: उसके बाद हम सप्लीमेंट्री फूड चालू करेंगे जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, वेजिटेबल्स हैं, वो देंगे, उसके साथ माँ का दूध हम पिलाते रहेंगे बच्चे को
0: जी।
1: उसके बाद धीरे धीरे 2 साल तक हमको माँ का दूध पिलाना है और साथ में सप्लीमेंट्री फूड चलेगा।
0: जैसे शुरुआत में उसको दाल का पानी भी दे सकते हैं,
1: हम दाल का पानी दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दाल भी दे सकते हैं,
0: दाल भी दे सकते हैं, और चावल का जो माड़
1: चावल
0: दे सकते हैं, चावल
1: मैश किए हुए अच्छे से गले हुए जो है ना चावल दे सकते हैं, आलू भी दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीजें जो आराम से वो निगल सके,
0: उसके दांत नहीं
1: चबाना ना पड़े उसको, वो चीजें हम बिल्कुल मैश करके दे सकते हैं,
0: सब्जियों का सूप बना कर।
1: बिल्कुल,
0: तो ये पूरक आहार 6 माह के बाद प्रारंभ करें,
1: 6 माह के बाद प्रारंभ करके 2 साल
0: साथ में स्तनपान कराती रहे,
1: साथ में स्तनपान 2 साल तक कराना
0: है जी, यानी 2 साल तक स्तनपान करा सकते हैं, इसके पश्चात वो स्तनपान जो है कम बंद कर दे, और पूर्णतः बच्चे को जो पौष्टिक आहार है जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसके शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, वो देना प्रारंभ करें, ताकि बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ अच्छा पनप सके और वो स्वस्थ और हृष्टपुष्ट बन सके
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, आज आपने इस विषय पर शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य इतनी विस्तृत जानकारी दी, और हमारी बहनों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से उनको अपना जो दूध है वो बच्चे को पिलाना है, कब तक पिलाना है, और किन बातों का ध्यान रखना है, सभी बातों पर हमने विस्तृत आपसे बातचीत की। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बहनों के साथ साझा की, बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद
2: सखियों। अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता जिसका विषय था शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। भेंट वार्ता में डॉक्टर राम कुमार चौधरी से भेंट कर रही थी श्रीमती हेमलता चौधरी। सखियों, जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, कुछ लोग केवल परिचित बनकर रह जाते हैं, तो कुछ हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। ऐसे ही रिश्ते का नाम है मित्रता। हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो सखियों, आज है अगस्त का प्रथम रविवार और आज है मित्रता दिवस, तो सर्वप्रथम आप सभी बहनों को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यह दोस्ती इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। बहनों, कहा भी गया है, संकट में जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाए। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ दे, बल्कि वह है जो कठिन समय में हमारा हाथ थामे, हमारा हौसला बढ़ाए और हमें सही राह दिखाए। आज के समय में सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मित्रों की पहचान संख्या से नहीं बल्कि उनके व्यवहार, विश्वास और अपनत्व से होती है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है, वह हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की प्रेरणा देते।

लगता है। जब हम निराश होते हैं तो वह हमें उम्मीद की नई किरण दिखाता है। सखियों, भारतीय संस्कृति में मित्रता का विशेष स्थान रहा है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी आदर्श मानी जाती है। आर्थिक स्थिति अलग होने के बावजूद उनके बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। यह मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते धन दौलत से नहीं बल्कि मन की सच्चाई से बनते हैं। मित्रता केवल समान उम्र के लोगों के बीच ही नहीं होती, माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और जीवन साथी भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। जब परिवार में मित्रता का वातावरण होता है तो संवाद बेहतर होता है, विश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। एक अच्छा मित्र चुनना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है स्वयं भी एक अच्छा मित्र बनना। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा विश्वास करें तो हमें भी ईमानदार, संवेदनशील और सहयोगी बनना होगा। मित्रता में स्वार्थ, ईर्ष्या, झूठ और धोखा कभी स्थान नहीं पाना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वहीं मित्रता लंबे समय तक बनी रहती है। हमारी जिंदगी में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक सच्चा मित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसकी दो बातें, एक मुस्कान या एक छोटा सा सहयोग भी जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। सखियों, माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को अच्छे मित्र चुनने की सीख दें। बच्चों को ऐसे साथियों का चयन करना चाहिए जो उन्हें अच्छी आदतों, अनुशासन, पढ़ाई, खेल और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करें। गलत संगति जीवन की दिशा बदल सकती है, जबकि अच्छी मित्रता सफलता और अच्छे संस्कारों की राह आसान बना देती है। फ्रेंडशिप डे केवल मित्रता का उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह स्वयं से प्रश्न पूछने का अवसर भी है। क्या हम किसी के सच्चे मित्र हैं? क्या हम अपने मित्रों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो यही सच्ची मित्रता की पहचान है। मित्र वही जो राह दिखाए, गिरने पर फिर से उठना सिखाए, सुख दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाए।

0: सखियों, हम सभी पूरे श्रावण महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और कोई कोई तो पूरे महीने के व्रत रखते हैं। शिव जी की पूजा में शिव को बेलपत्र धतूरा चढ़ाया जाता है, साथ ही सात्विक एवं फलाहारी भोग अर्पित किया जाता है। आज हम खाना खजाना में आपके लिए लाए हैं कुछ फलाहारी भोग जो इस श्रावण मास में बनाए जाते हैं। तो पहले हम आपको बता रहे हैं मखाने की खीर बनाने की विधि। तो नोट कीजिए, मखाने की खीर में लगने वाली सामग्री, हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 कप मखाने, 2 चम्मच घी, 4 से 5 चम्मच चीनी, कुछ मेवे बारीक कटे हुए और थोड़ा सा इलायची पाउडर। मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले घी में मखानों को 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। आधे मखानों को हल्का दरदरा पीस लेंगे और आधे अलग रख लेंगे। दूध को उबाल कर थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। अब इसमें हम मखाने मिला देंगे और 10 से 15 मिनट पका लेंगे। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और साथ ही मेवे डाल देंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। लीजिए, मखाने की खीर बनकर तैयार है। सखियों, अब हम आपको बता रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 कप घी, 3/4 कप चीनी, 2 से 2.5 कप पानी, इलायची पाउडर और कुछ कटे हुए मेवे। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने के लिए आटे में घी डालकर उसको सुनहरा होने तक भून लें। अब अलग से पानी और चीनी को मिलाकर उबाल लें। अब इस पानी को धीरे धीरे आटे में मिलाते हुए लगातार चला लें, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिला लें। लीजिए, शिव जी को भोग लगाने के लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार है। सखियों, सावन केवल पूजा पाठ के दिन ही नहीं बल्कि सेवा, दया और प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। तो इस श्रावण मास शिव जी की आराधना के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य भी करें, तभी हमारे व्रत सफल होंगे। और अब अपने कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दें अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं राजीव कुमार रावत द्वारा गाया ये सावन का लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए घनश्याम वासवानी द्वारा गाए गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे घनश्याम वासवानी द्वारा गाए गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: इस समय आप हैं हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

अनुराग सैकिया का संगीत शकील आज़मी और सना मोहिउद्दीन के लिखे बोल, राघव चैतन्य की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म थप्पड़ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म लूडो से, आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

0: प्रीतम का संगीत संदीप श्रीवास्तव के लिखे बोल। लूडो फिल्म से गीत सुना आपने, फिल्म अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर देश भर में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मैनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अभियान में भाग लिया और उन्होंने कहा,
3: पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, ऐसे में हमारे सबके सामने हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुदेव कुटुम्बकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें, नशे से दूरी बहुत है जरूरी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं मंगलवार को वे तप्तपानी के पास स्थित माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध होगी। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। विभाग ने बताया कि ऑनलाइन ई प्रवेश व्यवस्था, दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन और कॉलेजों में हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं से प्रवेश प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग व बागवानी जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को और गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश

या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में खंडवा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वेयर हाउस से मूंग की निकासी अब केवल SDM की लिखित अनुमति से ही हो सकेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है

0: पैसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ

0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन

0: आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: स्वागत है हमारे सभी बाल श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। मैं हूं आपकी रेडियो दीदी नेहा जैन। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हमें ये बयां कर रहे हैं कि आप सब आज बहुत खुश हैं। और खुश होना तो बनता ही है, क्योंकि आज है रविवार का दिन यानी छुट्टी का दिन। और साथ ही बाल साथियों, आप सबके खुश होने की एक और खास वजह भी है, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस। सभी बाल मित्रों को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल साथियों, दोस्ती का मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप बैंड बांधना या हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाना, खुशियां बांटना, मदद करना और हमेशा अच्छी बातें सीखना और सिखाना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बाल सभा को। और आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, सुनेंगे आपके बाल मित्रों की कविताएं और जानेंगे कई नई और रोचक बातें जो हमें अच्छा, समझदार और जिम्मेदार बनाने में मदद करेंगी। सुनते हैं सबसे पहले आज फ्रेंडशिप डे पर ये कविता।
3: मेरा नाम पूर्वी जैन है। मैं आज आप सभी को एक दोस्ती पर कविता सुनाने वाली हूँ। दोस्ती का रिश्ता न्यारा है, सब रिश्तों से प्यारा है। दोस्ती का रिश्ता न्यारा है, सब रिश्तों से प्यारा है। हंसी खुशी में साथ निभाएं, हंसी खुशी में साथ निभाएं, दुख में भी हौसला बढ़ाएं। सच्चा दोस्त जो पास हो, हर मुश्किल में खास हो। दूर रहो या पास रहो, दिल में दोस्ती का एहसास रखो। दूर हो या पास हो, हर मुश्किल में दोस्ती का एहसास रखो।
2: बहुत ही सुंदर। अपनी कविता के माध्यम से पूर्वी ने दोस्ती का बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। बाल साथियों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही राह दिखाए, अच्छी आदतें सिखाए और हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाए। और अब सुनते हैं हमारी अगली कविता।
4: मेरा नाम आरव अग्रवाल है और मैं क्लास 5th का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार, त्योहारों का आना जैसे टप टप माँ का प्यार। लेकिन सोचा तो यह जाना, सभी मनाते हैं त्योहार, सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। फसल खूब लहकती है तब खेत मनाते हैं त्योहार, जब लद जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। पानी से भर जाती है तब नदिया का होता त्योहार, ठंड से जब धूप खिलती है तो होता सूरज त्योहार, और अगर मन अड़िक रहे तो पर्वत का

0: होता त्योहार, पूरे दिल से खुशी लुटाते, खिलखिल हंसते खुशी लाते, लेकिन लगते कम त्योहार, अगर बीज इनके भी होते, खूब उगाते हम त्योहार, खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांधे कतार।
1: मेरा नाम दिव्य जैन है, मैं KG 2 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नीले पीले लाल गुलाबी कितने सारे होते फूल, फूलों का राजा एक गुलाब दिखता एकदम फ्रेशनेस कूल। नेहरू जी को ये प्यारा लगता था, हर पल रहता उनके साथ, बड़ी निराली इसकी बात।
2: मेरा नाम दर्श अग्रवाल है। बिना तेल का बिना दीप का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। नवमंडल का सूर्य है वह कड़कड़ में उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। चमकीली किरणों से अपना नए सवेरा चमकाता है, उसकी चमकीली किरने से तन मन जीवन का नाता है।
3: मेरा नाम जानवी जैन है, मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। एक डाल पर बैठा बंदर भीग रहा पानी के अंदर, ठटर ठटर कांप रहा था, कहाँ छुप हुए झांक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा कहाँ नहीं था तुमने मां, अब पानी में भीग रहे हो, अच्छी अच्छी छीक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चू चू चू चू चिड़िया रोई वे डाल पर वो भी सोई।
4: बाल साथियों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल साथियों, और अब सुनते हैं हमारी अगली कविता।
1: मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। जी करता है मैं उड़ जाऊँ बनकर एरोप्लेन, कभी ना फिर मैं नीचे आऊँ हवा में खेलूँ खेल, सूरज से मैं हाथ मिलाऊँ चंदा को स्टाइल दिखाऊँ, यूके और कनाडा जाऊँ घूमूँ मैं स्पेस, आसमान को मैं छू जाऊँ धरती को टाटा कर जाऊँ, जोर जोर से मैं चिल्लाऊँ बनूँ मैं एरोप्लेन, एरोप्लेन से सब मुझे बुलाएं मुझको भी पल लग जाए ये सपना सच हो जाए बनूँ मैं एरोप्लेन।
2: मेरा नाम मौलिक है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नत सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छह रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, जन्म

0: थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: मेरा नाम समीक्षा जैन है। एक कविता माँ के नाम। माँ तू एक पेड़ है, तेरी छाँव में मैं रहूँ उम्र भर। तेरी डाली से निकला हूँ मैं, तुझी से जिंदा हूँ मैं। कभी सूख जाऊँ पत्तों सा, फिर भी टूट कर तेरी गोद मैं रहूँ। धूप हो बारिश तुझसे लिपट जाऊँ मैं, हवा जब मुझे उड़ा ले जाए। तुझी में चिपक जाऊँ मैं, तेरी जड़ में समा जाऊँ मैं। तुझसे शुरू हूँ तुझी पर खत्म हो जाऊं मैं। तेरी आंचल सा फैला है बिस्तर तेरा, मुझ में तू है से है पूरा संसार मेरा। धन्यवाद।
2: मेरा नाम नायरा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आसमान से चमकी बिजली, छतरी लेकर मीना निकले। काले काले बादल आए, चाहे जितना जल बरसाए। धूप बारिश में हमें बचाए, छतरी सबके मन को भाए। धन्यवाद।
3: मेरा नाम खुशी है, मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। सदा दूसरों के हित देखे हम, बन जाए वो इंसान।
4: मेरा नाम रितिका है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। फूल बिछे हो या काटे हो, राहें अपनी मोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दिन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाट दीन का बड़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो।
5: मेरा नाम है प्रांशी, मैं एक कविता सुना रही हूँ माँ

0: नहीं बोलता लेकिन घर।
1: मेरा नाम देवांशी है। मैं आपके सामने एक पोयम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों मैं हूँ चिड़िया रानी, करती रहती हूँ मनमानी, उड़ जाती मैं आसमान में, कभी उतरती इसी झील में, इसमें रहती मछली बनती है वह बड़ी से, मुझे देखो डर जाती है, जल के भीतर छिप जाती है। तुमने जो दाने बिखरा उनको इस मछली ने खा, मैं डाली पर चहक रही हूँ, उस सुंदरता को निरख रही हूँ। थैंक यू।
2: बाल श्रोता, अगर खेलते वक्त आपके किसी दोस्त को चोट लग जाए तो जो सबसे पहली और तुरंत की जाने वाली मदद होती है, इसे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहते हैं। बाल साथियों, याद रखिए कि प्राथमिक उपचार का मतलब डॉक्टर बनना नहीं है, इसका मतलब है जब तक बड़े या डॉक्टर ना आ जाए तब तक समझदारी से अपने दोस्त की सुरक्षित मदद करना। खेलते वक्त कभी आपके किसी दोस्त को अगर चोट लग जाए तो कभी भी घबराइए नहीं, घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। बाल साथियों, इसी समझदारी का नाम है प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार का मतलब है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति की सुरक्षित और सही तरीके से की गई शुरुआती मदद। बाल साथियों, आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। बाल साथियों, अगर किसी दोस्त को चोट लग गई तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है और किसी बड़े व्यक्ति को, माता पिता को, आपके सर को, मैडम को या आपके आसपास के जो भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको तुरंत बुलाइए। यदि उसे हल्की चोट लगी है तो उसे आराम से बैठने में मदद करिए। यदि हाथ या घुटना छिल गया है तो किसी बड़े की मदद से साफ पानी से घाव को साफ करें। अगर उसे ज्यादा चोट लग गई है तो तुरंत किसी बड़े को बुलाएं और डॉक्टर की सहायता दिलाएं। अगर आपका दोस्त चलने में असमर्थ है तो उसे एक सुरक्षित जगह पर बैठा दें या उसे

निपटाने में मदद करें। और इस बात का भी ध्यान रखें बाल साथियों कि आपके घर में, स्कूल में या खेल के मैदान में आप जहां भी खेल रहे हो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स कहां पर रखा है, इसकी जानकारी हमेशा रखें। बाल साथियों याद रखिए, समझदारी, शांति और समय पर बड़े लोगों को बुलाना भी एक बहुत बड़ी मदद होती है और यही एक अच्छे और जिम्मेदार बच्चे की पहचान होती है। बाल साथियों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपीता कपड़ा।
0: कपड़ा।

बाल साथियों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम बाल सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल। बाल साथियों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ प्रेम और अपनापन बनाए रखें, रोज थोड़ा समय खेलकूद के लिए निकालें, अच्छी किताबें पढ़िए, नई नई बातें सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाल साथियों, इसी प्यारे संदेश के साथ आपकी रेडियो दीदी नेहा जैन आपसे विदा लेती है। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर देशभर में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मेनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये मिलेंगे। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल यानी 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 पर प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर श्रोताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कंवरजी सिंह। सुर्खियों में प्रसारित होगा रात 8:00 और 8:15 पर सुने बैतूल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रस्तुतकर्ता है प्रवीण चौरे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में आज रात 10:00 सुने सुधाकर देवले का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ। तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज अगस्त महीने का पहला रविवार है, यानी कि आज के दिन हम लोग मनाते हैं फ्रेंडशिप डे, वो दिन जिस दिन हम दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अनुभूति, आज तो हमारा युवा तरंग कार्यक्रम भी है, तो कुछ तो खास होना चाहिए ना?
1: बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में क्या होने वाला है ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। और ईरा, इसी के साथ पहले बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि आज के प्रश्न क्या है।
0: बिल्कुल अनुभूति, और साथियों, कार्यक्रम का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
1: और दूसरा प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए, कार्यक्रम के अंत में हम उत्तर बताएंगे, तब अपने उत्तर आप हमारे साथ जरूर मिलाइएगा।
0: बिल्कुल साथियों, और आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सुंदर से गीत के साथ, जो कि है दोस्ती के नाम।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ईरा, तुम्हें पता है आज क्योंकि रविवार है तो थोड़ी सी साफ सफाई चल रही थी घर पे सुबह सुबह, तो जब मैंने मेरी अलमारी खोली तो डायरी के पन्नों के बीच दबा हुआ एक पुराना फीका पड़ा हुआ फ्रेंडशिप बैंड मिला मुझे। उसे देखते ही लगा जैसे वक्त ठहर सा गया हो। वो भी क्या दिन थे ना, हफ्तों पहले से पॉकेट मनी बचाना और फिर दोस्तों के लिए सबसे चमकीला फ्रेंडशिप बैंड चुनना।
2: ये बात तो अनुभूति तुमने बिल्कुल सही कही है। हाथ पर जितने ज्यादा बैंड बंधे होते थे हमारी कॉलर उतनी ही ऊंची हो जाती थी तब, है ना?
1: हाँ ईरा, और तुम्हें बचपन की बातें याद है ईरा, जब शाम में दरवाजों पर दस्तक होती थी, ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना कोई कॉल, बस बाहर से एक आवाज आती थी, भाई खेलने आएगा क्या?
2: सच का अनुभूति, वो मोहल्ले दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सच्ची दोस्ती और ढेर सारा प्यार और मस्ती, है ना?
1: बिल्कुल ईरा, और इसीलिए आज का दिन भी बेहद खास है। जब हम दोस्त शब्द सुनते हैं तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और उस शख्स का चेहरा सामने आ जाता है जिसके कारण ये मुस्कान है। इसी बात पर कहा जाता है कि सच्ची दोस्ती एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसमें छुपा निस्वार्थ और गहरा प्यार है।
2: जी हाँ साथियों, दुनिया चाहे रूठ जाए हमसे मगर यार खड़ा रहे साथ तो हर दिन त्योहार है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन दोस्त वो परिवार है जिसे हम खुद चुनते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, औपचारिकता नहीं हमें निभानी होती और कोई मुखुटा भी नहीं होता, बस जो है सामने है। भले ही फिर वो लड़ाई ही क्यों नहीं हो रही हो, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक ही क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन प्यार उसमें निश्चित तौर पर ढेर सारा होता है।
1: बिल्कुल, और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर हजार फ्रेंड्स लेकर घूम रहा है, वहाँ दिल से जुड़ा एक सच्चा दोस्त भी मिलना किसी वरदान से कम नहीं है।
2: ये तो अनुभूति तुमने बिल्कुल सही कहा। दिखावे की इस दुनिया में जो सादगी का एहसास है, भीड़ चाहे कितनी ही क्यों ना हो, वो चेहरा सबसे खास है जो बिना कहे दिल की हर बात को जान लेता है, वही तो एक सच्चा दोस्त कहलाता है ना।
1: तो दोस्तों, दोस्ती की अहमियत सिर्फ हंसने खेलने तक नहीं है, इसका असली मूल्य, असली वैल्यू तभी पता चलती है जब हम जीवन में सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। एक सच्चा दोस्त हमें गिरने नहीं देता, वो हमारी ताकत बनता है।
2: बिल्कुल साथियों, तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपने पुराने दोस्तों से बात करें। कुछ हमारे बचपन के जो दोस्त होते हैं जिनसे अभी किसी कारणवश हम लोग बात नहीं कर पाते, उनसे जुड़े नहीं होते हैं, तो आज साथियों वो मौका है, आज वही दिन है जब आप लोग अपने पुराने दोस्तों से बात करें, उनसे मिलें, उनसे पुरानी यादें ताज़ा करें और फिर से

0: वही दोस्ती को एक नया मोड़ दे, नए नया रूप दे।
1: बिल्कुल हीरा। और इसी बात से मुझे भी एक बात याद आई। याद क्या आई है, मैं कब से तुम्हें कहना चाहती थी, तुम्हें देना चाहती थी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हारे लिए एक फ्रेंडशिप बेल्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि हम सब भी, हमारी भी दोस्ती उतनी ही खास है जितनी हमारी दोस्ती हमारी श्रोताओं से है। तो इस दोस्ती के नाम भी कुछ हो जाए।
0: बिल्कुल अनुभूति, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे लिए भी फ्रेंडशिप बेल्ट लेकर आई हो। क्या बात है, हम लोग पुराने जो दिन है, बचपन की यादें हैं ना, वो ताजा हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि हम लोग भी, हमारे सुनने वाले श्रोता जो हैं, कई सारे लोग दोस्ती तो मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ तो जुड़े होते हैं, लेकिन जो बचपन में हम लोग फ्रेंडशिप डे पर किया करते थे ना, कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए सबसे खास वाला फ्रेंडशिप बेल्ट हम लोग लेकर आते थे, तुम भी मेरे लिए सबसे स्पेशल वाला ही बेल्ट लेकर आई होगी, है ना अनुभूति?
1: हाँ ईरा, और इसके बाद मेरा प्लान है, मैं तुम्हें कहने वाली थी कि जैसे ही हमारा ये कार्यक्रम खत्म होता है और हम स्टूडियो से निकलेंगे, तब हम वहीं बेक समोसा खाने जाएं।
0: बिल्कुल अनुभूति, और बारिश का मौसम है, सावन का महीना चल रहा है, इतने बढ़िया मौसम में गर्मा गर्म बेक्ड समोसा और फिर हमारी बातचीत का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना।
1: हाँ, और बिल्कुल। तो ईरा, हमारा प्लान हमने अब हमारे श्रोताओं को बता दिया है, उनका भी हम जानना चाहेंगे। तो आप भी साथियों, क्या आज के दिन खास कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हमें जरूर बताइए। फिलहाल एक गीत हम सुनते हैं, और गीत के उस पार हम शुरुआत करेंगे हमारे युवा तरंग कार्यक्रम की।

0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है और आज का दिन संडे भी है, तो युवा तरंग का दिन भी है। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ युवा साथियों से, और आज के दिन विशेष तौर पे हम जानेंगे कि उनकी दोस्ती कैसे हुई, उनके दोस्तों के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, और बहुत सारा मज़ा आने वाला है ना ईरा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अनुभूति, मुझे तो ना एक फ्रेंड्स ग्रुप वहाँ पर सामने खड़ा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो भाई उनसे चल के बात करना तो बनता ही है ना?
0: बिल्कुल, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो,
1: क्या नाम है आपके?
4: विशाल यादव, दीपक यादव,
2: शिवानी यादव।
1: तो विशाल, दीपक और शिवानी, ये बताइए कि आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई?
4: शिवानी से मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज के सेकंड ईयर में मिला था, बीटेक में, और दीपक मेरे रूम पार्टनर है।
1: अच्छा, तो मतलब दीपक और शिवानी की आप ही के थ्रू दोस्ती हो गई है? ऐसा
4: मेरे थ्रू शिवानी और दीपक की दोस्ती हुई है।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो ये बताइए, जब आप लोग पहली बार कॉलेज सेकंड ईयर में मिले थे, या जब आप लोग रूम में थे पहली बार, जब आप लोगों का आमना सामना हुआ था, तो ऐसी क्या चीज थी एक दूसरे के बारे में जिसने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करा और आपको लगा कि नहीं यार, ये मेरा जो है क्लोज फ्रेंड या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की, ऐसे ही फ्रेंड की जो है वो तलाश रहती है?
4: देखो, खासकर तो ये कि एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, सबके साथ कंफर्टेबल हो जाते थे, तो मुझे लगा था कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड या मेरी बातों को समझे। जब इनको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर इनको कुछ बोलूंगा तो ये जज नहीं करेंगे मुझे, तो इस तरीके से इनको दोस्ती इनसे अच्छी हो गई है, और अभी बहुत टाइम से साथ में और आगे भी रहेंगे बहुत टाइम तक।
1: बिल्कुल रहनी ही चाहिए, दोस्त तो हमें ऐसे सोच समझ के और ऐसे चुनने चाहिए कि एक बार दोस्ती हो जाए तो फिर वो फॉरएवर फ्रेंडशिप जो कहते हैं ना, वो हमेशा के लिए चले, है ना?
0: बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कितने समय से दोस्त हैं, कितने सालों से?
2: हमारी फ्रेंडशिप को अभी 3 ईयर कंप्लीट हो गया है।
0: आप लोग इंदौर से हैं?
2: नहीं, प्रॉपर इंदौर से नहीं है, हम इंदौर से बाहर से हैं, तो खरगोन साइड से।
0: अच्छा, तो आप तीनों खरगोन से?
2: हाँ, खरगोन से तीनों।
0: तो आप दोस्त इंदौर आकर बने या वहीं से?
2: नहीं, हम कॉलेज फ्रेंड है, हमारा कॉलेज खरगोन साइड है, तो उधर से ही बने थे।
0: क्या बात है। अच्छा, अगर हम चाहे, जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें हम बताना चाहें, क्योंकि आज का दिन दोस्ती के नाम है, तो बहुत सारे दोस्त भी हमें सुन रहे होंगे जो आपस में अपनी दोस्ती इंजॉय करते हुए रेडियो सुन रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि दोस्ती में एक ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए या होती है जो दो लोगों के बीच की दोस्ती को, या तीन या चार या जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं, उनकी दोस्ती को खास बनाती है, स्पेशल बनाती है?
2: ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसा समझने वाले पर्सन मिल जाए तो ऐसा फ्रेंडशिप अच्छी हो ही जाती है, और ये वैसा ही है, मतलब समझने वाले हैं, तो वही बात की अगर एक दूसरे को समझेंगे तो फ्रेंडशिप ऐसा चलेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आप तीनों ने बताया कि आप लोग खरगोन से हैं और इंदौर में रहकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है खरगोन की जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? कोई जगह या कुछ भी खास, खाने पीने की डिश हो गई या कुछ भी ऐसी खरगोन की कुछ तो मेमोरी होगी क्योंकि बचपन आपने वहीं पर बिताया है।
4: देखो, मेरे लिए तो मैं जहाँ पर स्कूल जाता था क्रमांक 1 में, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वहाँ साइड में महाजन लस्सी है, तो हम डेली

0: तीनों फ्रेंड थे, मैं, जतिन और मनीष, हम तीनों डेली वहीं पर लस्सी पीने जाए, तो वो इस मेरे लिए बहुत स्पेशल है।
1: क्या बात है। और दीपक आपकी कुछ?
2: हम खरगोन बस स्टैंड पे एक चाय की दुकान है जो कि वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो मुझे बस वही याद आता, जब भी वहाँ जाता हूँ वही चाय पीता हूँ।
3: मुझे भी वो नटराज चाय वाला।
1: चाय और लस्सी जो है खरगोन की बहुत फेमस है। ठीक है भाई अनुभूति, हमें भी ट्राई करनी पड़ेगी अब तो।
4: बिल्कुल। और खरगोन जाने से पहले ये बताइए कि अब तो आप इंदौर आ चुके हैं, इंदौर आके आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी जहाँ पे वैसी चाय या वैसी लस्सी मिलती हो, या कुछ और जो आपको खाने पीने का पसंद हो जो इंदौर में आपको खासकर मिलता है और पसंद आता है?
3: भगत सिंह, मतलब स्टार्टिंग से हम वही आके चाय पी रहे हैं, तो उधर की चाय हमें बहुत अच्छी लगी है।
4: और कहाँ पर है ये?
3: ये इधर भगवान कुआ पे ही है।
0: वो ऐसा है कि भगत सिंह पे ऐसा है कि सभी फ्रेंड एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं, कहीं से भी सबको कॉल कर देते हैं कि भगत सिंह पे आ जाओ, यहीं पर बैठ के थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बातें एक दूसरे की शेयर कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम रहती है टेंशन में एंजाइटी में रहते हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं, जिसके बाद क्या बहुत अच्छा फील होता है।
1: क्या बात है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और चाय पर दोस्तों के साथ चर्चा अगर होती है तो मुझे लगता है कि कोई भी टेंशन हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक बार हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं तो थोड़ी बातचीत होती है तो सॉल्यूशन जो है उसका हल तो निकल ही जाता है, और लाइट तो हम फील करने ही लगते हैं, है ना अनुभूति?
4: बिल्कुल ईरा, जैसे हम लोग भी यहाँ स्टूडियो में आते हैं तो मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। यही दोस्ती की खासियत है कि यहाँ पर मन मुटाव नहीं होता, होता भी है तो बहुत जल्दी सुलझ भी जाता है ना?
1: और यही होना चाहिए मुझे लगता है, सच्चे दोस्तों की तो यही पहचान होती है ना। अच्छा ये बताइए कि आप लोग हर साल आपका फ्रेंडशिप डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों से बातचीत करते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, विजिट करते हैं, या कैसे अपना फ्रेंडशिप डे को स्पेशल बनाते हैं, अपने दोस्तों को ये महसूस कराते हैं कि वो आपकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं? और ये भी बताइए कि आज आप क्या करने वाले हैं फ्रेंडशिप डे पर?
0: खासकर ऐसा तो कुछ नहीं, बस कहीं पर बैठकर कुछ खाएंगे, बातें शेयर करेंगे, चाय पियेंगे, कहीं पर घूमेंगे। और स्पेशल ऐसा है कि स्पेशली ऐसा नहीं फ्रेंडशिप डे के दिन ही फ्रेंड को थोड़ा स्पेशल फील करवाएं, डेली करवा सकते हैं।
2: तो ऐसा है कि जब भी हम फ्रेंड साथ में मिलते हैं तो हमारी बचपन की बातें निकलती है, तो मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जिन पे हम मतलब कि घंटों बिता देते हैं, हमको बहुत मजा आता है वो बातें करने में, तो बस यही बातें हैं जो साथ में बैठ कर हम रोज करते हैं।
3: मैं भी यही कि साथ में बैठ के आई यही फ्रेंडशिप, और वो तो डेली का हो गया है, तो फ्रेंडशिप डे ऐसा स्पेशल नहीं है कि उसी दिन ऐसा जाए।
1: बिल्कुल, लेकिन हम लोग रोज तो अपने फ्रेंड्स को स्पेशल फील करवाते ही हैं, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाने के लिए मुझे लगता है फ्रेंडशिप डे होता है, है ना अनुभूति?
4: बिल्कुल। और ईरा ये हमें आज पता चला और सीखने को मिला कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही दिन फ्रेंडशिप डे मनाया जाए, हम हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर करके, कुछ टाइम स्पेंड करके फ्रेंडशिप डे मना सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस।
1: तो हमें आपसे बात करके वाकई बहुत ही अच्छा लगा, आपकी दोस्ती इसी तरह हमेशा बरकरार रहे, आप लोगों की दोस्ती और गहरी हो, हम यही आपको विशेष देते हैं। और इसी के साथ ये बताइए कि आज आकाशवाणी इंदौर की ओर से कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे दोस्ती के नाम?
3: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।

0: तो अनुभूति, मुझे ना वहाँ 3-4 फ्रेंड्स कैफे में बैठे हुए दिखाई दे रही हैं और मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग बहुत ही हंसी मजाक कर रही हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है शायद उनके बीच, तो क्यों ना चल के हम भी उनसे बात करें और जाने आखिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है।
1: हाँ बिल्कुल चलते हैं।
0: हेलो, क्या नाम है आपके?
2: भूमिका।
1: मिनी जैन।
3: आस्था।
4: प्रज्ञा मेहर।
1: तो प्रज्ञा, आस्था, मिनी और भूमिका, कैसे हैं आप लोग?
2: बढ़िया
5: बढ़िया।
1: अच्छा, क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर?
2: हम गॉसिप्स, लड़कियों का फेवरेट काम।
1: अच्छा, तो जैसे आप लोग कैफे में आए हैं तो क्या ऑर्डर किया यहाँ पे सबसे पहले आके?
2: जूस।
1: कौन सा?
2: पाइनएप्पल।
4: ऑरेंज।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप लोग तो काफी हेल्थ कॉन्शियस भी लग रहे हैं मुझे, है ना?
4: हाँ बिल्कुल, हेल्थ के मामले में तो रहना ही पड़ता है।
0: अच्छा, तो फिर इंदौर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंदौर में तो जंक फूड और चाट और इन सब का काफी रहता है, लोगों को शौक तो क्रेज रहता है खासकर, तो फिर क्या आप लोग भी वो सब खाते हैं या नहीं? आप लोग अपनी डाइट मेंटेन करते हैं प्रॉपर?
4: मैं तो अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ, बट ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन लोगों को बहुत शौक है।
0: अच्छा, कौन कौन सी ऐसी फेवरेट डिशेस है आपकी जो आप अक्सर खाना पसंद करते हैं?
3: साउथ इंडियन फूड, जैसे डोसा, इडली, ज्यादातर हम लोग वही खाते हैं। वो तो आज हम लोग जूस पी रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए।
0: अच्छा, मोमोज और पानी पूरी नहीं खाते हैं आप लोग?
2: सिर्फ पानी बताशे, मेरे को मोमोज नहीं पसंद।
5: मेरे को भी नहीं पसंद मोमोज,
3: मैं सिर्फ पानी पूरी नहीं अच्छा लगता।
0: क्यों, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? क्योंकि हम लोग तो जैसा देखते हैं यंगस्टर्स जो है उनमें मोमोज का एक अलग ही क्रेज है अभी अगर देखे तो ऐसा क्यों लगता है आपको? मोमोज क्यों नहीं पसंद?
3: मोमोज बहुत स्पाइसी होता है इसलिए अच्छा नहीं लगता।
0: बिल्कुल सही कहा, और हेल्दी चाहिए हमें। वैसे आप बताइए, आप लोग ऐसी क्या डाइट फॉलो करते हैं या ऐसी क्या चीजें करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड?
2: सुबह योगा, रनिंग,
4: फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं।
2: मैं डेली खाना खाने के लिए वॉक करने जाती हूँ और ये मेरा रूल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शाम को वॉक करने जाती ही हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वॉक करना ही चाहिए।
0: अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, वॉक करना, रनिंग करना है, काफी जरूरी होते हैं, हेल्थ का ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए इस एज में। अच्छा, जैसा आपने कहा आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है?
4: हॉस्टल लाइफ अच्छी है बट थोड़ी घर को मिस करते हैं, फैमिली को मिस करते हैं, बस यहाँ का खाना पसंद नहीं, और तो फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं, कनेक्टेड होते हैं लोगों से तो बेटर लगता है।
1: अच्छा, हॉस्टल लाइफ जैसी आपकी रहती है, एक छोटा सा ब्रीफ बता सकते हैं आप, मतलब एक क्या रूटीन रहता है हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ?
2: हॉस्टल लाइफ में हम लोग का कोई रूल नहीं रहता है क्योंकि जब उठना है जो करना है करो, घर पे अकॉर्डिंगली पेरेंट्स रहना पड़ता है क्योंकि भाई टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है, टाइम से खाना है, बट यहाँ पे संडे को 11-11 बजे उठ रहे हैं क्योंकि कोचिंग नहीं जाना है, वैसे तो डेली उठना होता है, रात में 3 बजे सो रहे हैं, अगर घर पे 3 बजे सोएंगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी।
0: अच्छा, रात में 3 बजे तक करते क्या है आखिर आप लोग?
2: हम लोग हर सैटरडे नाइट को मूवी देखते हैं।
0: किस तरीके की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोग?
2: हम लोग लाफ्टर, हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी, रोमांटिक मूवी थोड़ा कम पसंद है।
0: अच्छा, ये बात है, फिर तो ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट है आपका, मतलब बॉलीवुड, टॉलीवुड, किस तरीके की मूवी?
2: हम लोग हर तरह की मूवी देखते हैं, जैसे कि हाँ मुझे बॉलीवुड मूवीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है और साउथ की मूवीज भी मुझे काफी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: अच्छा, तो बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट है तो गानों में भी इंटरेस्ट होगा ही सही?
2: यस।
1: अच्छा चलो, फटाफट एक एक फेवरेट गाना बता दो आप लोगों का। अच्छा, कोई गाता है?
2: नहीं।
1: डांस करता है?
2: बहुत ही खराब है।
1: अच्छा, डांस करते हो?
2: डांस हाँ, वो तो पसंद है मुझे डांस करना।
0: नहीं, अच्छा ये बताइए आप लोगों की हॉबीज क्या है, क्या करते हैं आप लोग अपने फ्री टाइम में?
4: गेम्स वगैरह।
1: जैसे कौन से गेम्स?
4: बैडमिंटन, लूडो।
2: मैं ड्राइंग और स्केचिंग करती हूँ, मुझे ड्राइंग स्केचिंग इतनी पसंद है ना, पहले मैं जब छोटी थी ना तो एग्जाम देके आती थी, जब एग्जाम फिनिश होते थे सबसे पहले मैं ड्राइंग करती थी, बच्चे सोते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, बट मैं हमेशा से ड्राइंग करती थी, अभी भी मेरा यही रूल है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा कुछ है ना तो चलो ड्राइंग करते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, किस तरीके की ड्राइंग्स करती हैं?
2: ड्राइंग्स जैसे कि मुझे कोई भी ड्राइंग मिल जाए वो कुछ भी, मतलब ड्राइंग में जैसे कि मैं कुछ भी देख रही हूँ कि अगर कुछ भी है XYZ फैमिली फोटो है तो मुझे ये बनाने बहुत पसंद है, पेट्स वगैरह भी है, कोई अपने पेट्स को लिए हैं तो मैं वो सब ड्राइंग करती हूँ, और मेहंदी भी मुझे काफी पसंद है।
3: मुझे गार्डनिंग पसंद है, जैसे अलग अलग टाइप के जो ट्रीज प्लांट्स रहते हैं उनको ग्रो करना, रोज और सनफ्लावर, वो सब।
4: मुझे मेहंदी लगाना वैसे बहुत पसंद है। मैं मतलब प्रोफेशन है मेरा, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ मैं, तो ऐसे से कुछ नया सीखती रहती हूँ कुछ भी यूट्यूब वगैरह से, तो उसमें बस यही हॉबी है मेरी।
0: मेहंदी मुझे लगता है हर लड़की को पसंद होती है और बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने। अच्छा आपने बताया आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है मेहंदी सीखने के लिए, या शौकिया तौर पे आपने सीखना शुरू करी और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स आ रही?
4: नहीं मैंने कोई क्लास व्लास कुछ नहीं लिया है, बस मैंने खुद से, मुझे इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा बहुत करती रहती थी, तो वो फैमिली ने उसको हाँ सपोर्ट किया है तो बस। और अब तो वैसे भी यूट्यूब है, इंस्टा है, तो किसी से भी देख के अपन ऑनलाइन सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपकी हॉबीज को आप किस तरह और निखार सकते हैं ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना हीरा?
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और एंजॉय करिए अपना दिन, अपना जूस, और इसी के साथ बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से।
4: यारों की यारी,
2: यारों की यारी।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो साथियों, ये था हमारा आज का युवा तरंग कार्यक्रम, जिसमें हमने ढेर सारी दोस्ती के बारे में बातचीत की। फ्रेंडशिप डे पर क्या कुछ खास हम लोग कर सकते हैं, हमारे दोस्तों के साथ हमारे बिताए गए खास पल हैं उनको हमने ताजा किया। हमें तो मजा आया ही कार्यक्रम करने में आज के, हमारे श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया होगा हमारा आज का प्रोग्राम सुनने में, है ना?
1: बिल्कुल, मित्रता दिवस आज के दिन हम सभी मना रहे हैं और बहुत अच्छी बात तुमने कही ईरा। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम हमारे साथियों को पसंद आया होगा। इसी के साथ अब वक्त है आज के कार्यक्रम के जो प्रश्न हमने पूछे थे उनके उत्तर बताने का।
0: तो साथियों, पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका उत्तर है 29 अगस्त को।
1: और दूसरा प्रश्न था कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जिसका उत्तर है असम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और इरा को।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, ये था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं याराना फिल्म के गीत से। स्वर किशोर कुमार का है, अनजान के शब्द हैं और राजेश रोशन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत दोस्ताना फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं गुलशन बावरा की गीत रचना कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, आवाज मन्ना डे की, और फिल्म का नाम है जंजीर।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं त्रिशूल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वर में। साहिल लुधियानवी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन खयाम का।

सिलसिला। जी हां श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। जावेद अख्तर के शब्द हैं और शिवहरी का संगीत।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए लता मंगेशकर का गाया चुपके चुपके फिल्म का गीत। संगीत SD बर्मन का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा, शोर नहीं,

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया मंजिल फिल्म का गीत, संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया मंजिल फिल्म का गीत। शब्द योगेश के थे और संगीत आर डी बर्मन का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रकाश पारनेरकर और साथियों के स्वर में अब सुनिए सुगम संगीत। प्रस्तुत है ये पहली रचना।

आकाशवाणी इंदौर से प्रकाश पारनेरकर और साथियों के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए संत मीराबाई की ये रचना।

0: श्रोताओं, प्रकाश पारनेरकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लोक संगीत में सुनिए सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। प्रस्तुत है ये पहली पारंपरिक रचना।

आकाशवाणी इंदौर से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है यह अगली पारंपरिक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सखाराम सीताराम और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने

0: आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूब नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित होगा रात 8 बजे और कार्यक्रम डगर विकास की सुनिएगा रात 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर और चित्रगीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे दिल्ली केंद्र से ही सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुधाकर देवले का गाया राग पूरिया और राग बसंती केदार। प्रस्तुति इंदौर केंद्र की होगी। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। चिंतन होगा कल प्रातः 6:30 पर। विषय रहेगा अच्छे विचारों की शक्ति और वाचक स्वर रूपाली चौहान का। खेती की बातें में सुबह 6:35 पर जैव उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां विषय की जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरितमानस गान हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सवेरे 7:20 पर। कार्यक्रम का विषय होगा स्तनपान सप्ताह और शाम

मास। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। मराठी कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित अरुण भादुड़ी का गाया राग नट भैरव। सिले की चिट्ठी कल 10:00 हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर। श्रोताओं, आइए अब आपको भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, रिले होगा कल सुबह 11:00। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे कल सुबह 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनेगा दिन में 12:02 पर, दिन में 2:00 और चित्रपट संगीत के अंतर्गत दिन में 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:00 होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। लोक संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:45 पर। आकाशवाणी इंदौर से सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा युवाणी कार्यक्रम के साथ शाम ठीक 5:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित होगा कल शाम 6:00। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी इंदौर है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अगले 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्त मध्य प्रदेश की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में जन भागीदारी का किया आह्वान। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना। 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अगले 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने की अपील की।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मिनट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इस अभियान में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक व सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आज नियंत्रण करते हैं, निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और कहा कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन वे कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर, बरहामपुर और तप्तपानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के बेरसिया में लगभग 50 करोड़ की लागत से बने शासकीय सांदपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस दौरान संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी भ्रमण करेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां मतगणना की ताजा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 84 महादेव दर्शन यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉ. यादव ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धा, साधना और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव समरसता, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक हैं। वहीं कल श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती होगी। इसके बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर आचार्य श्री समय सागर महाराज ने कहा कि अहिंसा, दया और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। इंदौर में राजस्थान के जैसलमेर सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा आरिफ को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सेफीनगर स्थित घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इमली बाजार कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मेजर हमजा आरिफ की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जैसलमेर में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। इनमें बॉक्सिंग के 10 पदक शामिल हैं, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयाल और प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीते। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ट्रिपल जम्प में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद भारत के कुल 39 पदक हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैतूल जिला मुख्यालय पर कल 3 अगस्त को कृषि उपज मंडी बडोरा में महोत्सव आयोजित होगा। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने कल जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में गो शेडो एवं भूसा भंडार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान को तेज कर दिया है। पिछले 10 दिनों में 57 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मीडियम है 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों के स्मिता की राम राम। भाई बहनों अपना कार्यक्रम में अपन नरी सारी बात करा उका में जाना कि कई सारी जानकारी भी लेवा और कई बार हम हमारा जो कई प्रगतिशील कृषक आए उनसे भी बात करा, लोकगीत भी सुना, नरी सारी बात करा। और ऐसे ज आज अपन कई योजनाना का बारे में जाना, उका अंतर्गत जाना किसान सम्मान निधि योजना कई हो और इको लाभ हम कैसे ले सका। हाँ भाई बहनों, और किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की केंद्रीय योजना है और जिका में किसान के हर बरस 6,000 रुपया की सहायता सरकार देवे और हर 4 महीना में 2,000 रुपया बैंक का खाता में आवी जावे, जिका से भी 3 किस्त में पूरा पैसों खाता में किसान के आवे है। यह योजना 2019 से प्रभावी हुई और इन्हीं योजना का सारू जो भी पात्र किसान रहे उनका एक पात्रता का सारू जो भूमि धारक है, किसान परिवार होना चाहिए जो हमारे भारत को नागरिक होना चाहिए, और परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चा ना जो रहे उनके वही परिवार इको पात्र रहे है। इका सारू आधार नंबर से जुड़ियो बैंक खातों जिको कि ई KYC कराना जरूरी होए, ऐसो खातों हमारे चाहिए। और जो भी मनक कई 10,000 रुपया से ज़्यादा प्रति माह के हिसाब से कदी सरकार कमावे और सरकारी कर्मचारी होवे या फिर वो उके पेंशन मिले है, तो वो ऐसो मनक जो है भारत को नागरिक होना का बादे भी इन्हीं योजना का सारू पात्र नहीं रहे। भाई बहन और अपन बात और भी नरी करांगा। अभी अपन सुनाए यो लोकगीत जिके गायो है शारदा पगारे ने।

0: हमने शारदा पगारे को गायो यो लोग गी सुनियो। अब इका साथे जे जो हमारे हम कोई न कोई जानकारी लावा हाँ उका अंतर्गत आज हम एक प्रगतिशील कृषक गोवर्धन डोडरिया से बात करांगा जो कि खाचरोत से हमारा साथ है बात करी रहा है और भी बात करेगा खरीफ फसल में समसामयिक कार्य पे। तो चलो सुनाया भेंट वार्ता। भाई बहन और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपन बखत बखत पर नरी सारी जानकारी ना आपस में बांटा हाँ जिका से कि कहीं भी कोई परेशानी हमारे आई रही है तो पतो चली जाए। वैसे तो हमारा सारा कृषक भाई बहनों और बहुत जानकार है जागरूक भी है पर हमारा उनमें से कई कृषक भाई बहनों उनमें से प्रगतिशील कृषक कई ऐसा रहे जो कि बड़ी अच्छे से खेती करे है और उका में अच्छो लाभ कमावे है। आज वैसे एक प्रगतिशील कृषक गोवर्धन जी डोडरिया खाचरोत से हमारा बीच उपस्थित है। सबसे पहले तो हूँ हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम की तरफ से उनको स्वागत करूं। राम राम गोवर्धन जी।
1: राम राम स्मिता दीदी।
0: अब हूँ तो सबसे पहला योज बोलूंगा कि भाई एक तो हमारा जो प्रकृति है वो हमारे कदी तो मौसम कई करवट बदली रही हो है, तो कदी कई करवट बदली रही हो है। तो अपन भाई ये सो है कि जो मौसम ना है उका अनुसार देखते हुए अब जैसे पहला से जुने ऐसो करी दियो तो खेल बताई दियो तो अब तमने कई बोनी करी अपना खेतना में कई बोयो उका हिसाब से कि जिससे तुम्हारे कई हानि होने से बची जाए।
1: स्मिता बहन इस साल कई मतलब पिछले काफी समय से मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है कि अल नीनो की वजह से इस साल वर्षा प्रभावित होगी और कई क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होगी और कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस स्थिति को देखते हुए जैसे सोयाबीन का तो हमारा पूरा क्षेत्र है, मालवा सोयाबीन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी सोया प्रदेश है, तो सोयाबीन तो हमने बोया ही है। इसके अलावा हमने एक खेत में उड़द बोए क्योंकि अच्छा। उड़द थोड़ा कम पानी में हो जाते हैं, तो कभी मान लो ज्यादा कम बरसात हुई तो वो फसल हमारी हो जाएगी अच्छी। इसके अलावा हमने बगीचा भी लगाया है, कुछ क्षेत्र में हमने पहले तो नींबू लगा रखे थे और इस साल हमने एप्पल बोर का लगाया है।
0: अच्छा,
1: तो वो भी है तो वो भी कम पानी में डिप से हो जाता है।
0: हाँ।
1: तो इस परिस्थिति को देखते हुए हमने ये तैयारी की कि कम से कम पानी में हम अच्छी फसल कैसे ले सकते हैं।
0: हाँ, तमने मतलब पहला से तैयारी करी रखी थी कि कभी कम पानी आए तो कहीं करना है और कभी अच्छो से पड़ जाए तो उका में भी। हाँ। सोयाबीन भी बोया नहीं तुमने?
1: सोयाबीन भी बोया है लेकिन उसका क्षेत्र थोड़ा कम कर दिया हर साल से।
0: हाँ, मतलब ये कि अपने पूरी तरह से हानि नहीं हुए, कहीं मिली जाए,
1: निर्भरता उस पर नहीं रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छो है। या तो बस यो सोचे समझी ने करा कदी तो भाई हम बहुत सारी हानि से बची सका।
1: तो पर इसका अब क्या है, अभी ऐसी व्यवस्था हो गई है और ऐसी मतलब सभी रिसर्च हो रहे हैं उससे हिसाब से पहले से पूर्वानुमान लगा देते हैं और उस वो पूर्वानुमान करीब करीब 70-80% तक सही भी बैठता है।
0: हाँ।
1: तो मौसम विभाग के हिसाब से अगर वो भविष्यवाणी उन्होंने की है तो उस हिसाब से हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें और फसल की तैयारी करें तो हमको इतना नुकसान जो होना है वो नहीं होगा।
0: अच्छा, हाँ, तो मतलब यो है कि भाई सगलाज किसान ने यो देखना चाहिए क्योंकि हाँ क्योंकि हम सब प्रकृति पे निर्भर है। किस खेती जैसो काम है जो कि बिल्कुल पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर
1: तरह से। वैसे तो पूरा विश्व ही प्रकृति के ऊपर निर्भर है।
0: हाँ, वो तो है।
1: विशेष रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से खेती निर्भर है, दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो खेती है वो तो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।
0: हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, अब अपना तुमने इतनी अलग अलग फसल ना लगाई है तो अभी फसल कैसी है?
1: अभी तक तो फसल की स्थिति बहुत अच्छी है।
0: अच्छा,
1: मतलब जैसा कह सकते हैं ना कि अपन आशानुरूप है पूरी फसल। उसमें कुछ भी हम ये कह सकते कि ये कमी है क्योंकि पानी इस फसल के मान से बराबर गिर रहा है समय पर। न तो अभी तक खींच दी पानी बरसात ने और न ऐसा हुआ कि ज्यादा बरसात हो गई तो उससे फसल को नुकसान हो। तो अभी तक फसल की स्थिति एकदम बढ़िया है।
0: हाँ, क्योंकि तुमने कम पानी वाली भी बोई दी नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब तुमने जैसे खाद अपन नाखा, हाँ, तो कौन सी खाद नाखोगा और कद नाखी दी या फिर अभी और नाखनी है?
1: स्मिता जी, सबसे पहले तो हम किसान क्या करते हैं कि हर 2-3 साल में मिट्टी परीक्षण करवा लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उस हिसाब से जिन जिन तत्वों की कमी है वो तत्वों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं और खास करके अगर हमको गोबर की खाद मिल जाए तो वो डालेंगे तो उसमें लगभग सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है।
0: अच्छा।
1: अलग अलग हमको कि ये कम है वो ज्यादा है ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब तत्वों की लगभग गोबर की खाद से पूर्ति हो जाती है। तो ये करते हैं, उसके बाद जो जो की कमी है वो खाद हम डाल देते हैं। और विशेष रूप से फास्फेट जो है, फास्फेट को तो कमी है तो उसको या तो बोते समय डाल सकते हैं या बोने के पहले, और उसके बाद में तो फिर ऊपर, क्योंकि फास्फोरस ऐसी चीज है फास्फेट कि फास्फेट कभी भी घुलनशील नहीं है मिट्टी में या पानी में, तो घुलनशील नहीं है, तो अगर हम बाद में डालेंगे तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा जमीन, और अंदर नहीं जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा, कोई उपयोग ही नहीं होगा, और धीरे धीरे वो मिट्टी में मिलके और निष्क्रिय हो जाएगा।
0: मतलब ये कि तम बघनी सोची समझी ने अपनी बोनी करनी तो उसका बाद फसल में कई करना है, ये सब सोचो समझो रहे।
1: बिल्कुल, कई किसानों को मैंने देखा है कि फास्फेट भी वो डीएपी लाते हैं और डीएपी को क्या करते हैं कि फसल में जब हमारी बड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद उसमें वो छिड़कते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें नाइट्रोजन तो हमारा काम करेगा, 18% नाइट्रोजन है वो तो काम करता है, लेकिन जो 46% फास्फेट है वो स्थिर रहता है, वो घुलनशील नहीं है, तो जमीन में जाएगा नहीं, और जमीन में जाएगा नहीं तो जड़े ऊपर आके तो उसको लेगी, ग्रहण करेगी नहीं, ऐसी स्थिति में हमारा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तो सभी किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम डीएपी को जब भी हो दें तो फसल बोते समय दे दें, या फास्फेट है जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी अगर देना है तो बोते समय दें, या बोने के पहले जो खेत जोतते हैं उस समय दें।
0: अच्छा,
1: तो उससे क्या होगा कि वो फसल को पूरा लाभ मिलेगा,
0: लाभ मिलेगा, फिर जड़ना भी ले लेगी। तो अब जैसे कि अपन ने अभी मौसम की बात कर ही रहा
1: जी,
0: था
1: जी।
0: तो गोवर्धन जी अभी ये बताऊ कि भाई जैसे अभी मौसम तो चल ही रही है, अभी आगे भाई कहीं करेगा कहीं नहीं, तो कहीं कोई तुम्हारे लगे कहीं की कोई प्रभाव, जैसे कि नहीं माना तो अपन सोयाबीन की फसल भी मान लो, तो कहीं प्रभाव पड़ेगा कहीं
1: अगर बरसात कम हुई तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: लगभग हर सभी फसलों में पड़ेगा।

0: लेकिन सोयाबीन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अगर कम हुई बरसात तो।
1: जैसे अब तुमने सोची ने कहीं कम पानी की फसल भी लगाई है तो अब तुम्हारे तो उकमें तो कहीं वो नहीं बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जो सोयाबीन है उका में जरूर
0: बिल्कुल पड़ेगा, उसका तो प्रभाव पड़ेगा। और उसके लिए यही है कि हम जो है सोयाबीन को थोड़ा घना नहीं रखें ज्यादा।
1: अच्छा,
0: ज्यादा घना रहेगा तो उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता रहेगी।
1: हाँ,
0: और अगर ज्यादा घना नहीं रहेगा तो पानी थोड़े कम पानी में भी वो पूर्ति कर लेता है। और ज्यादा घना रखने में एक और नुकसान ये है कि उसमें अवफलन की समस्या आती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हवा नहीं मिलती है।
1: हाँ,
0: हवा नहीं मिलती है तो फूल जड़ जाते हैं उसके, तो कई बार अवफलन होता है, उसमें अवफलन होने से हमको उसका
1: उत्पादन से भी नुकसान हो जाए।
0: हाँ, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, दोनों तरह से नुकसान है उसमें, ज्यादा घना में तो घना नहीं रखना है हमको, जो तो पौधे हैं वो पौधे से पौधे की दूरी इतनी रखना है कि कम से कम उसको हवा मिलती रहे। तो हवा मिलेगी तो वो सांस लेंगे, पत्तों से सांस लेती है हर फसल।
1: हाँ, तो थोड़ा घनो कम भी पानी होएगा तो उका में ही जाएगा। हाँ,
0: ये होता है।
1: तो अभी जैसे कि अब बोई बोनी भी हुई गई है, सब सगलो काम तो हुई गयो, तो कहीं कोई ऐसी सावधानी जो कि तुम्हारे भाई ऐसे लगे कि भाई अभी अभी भी ये सावधानी रखी ले कदी किसान, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी एक तो तुमने बताई दियो कि घनो नहीं रखनो है। हाँ, और भी कहीं ऐसी कोई सावधानी तुम्हारे लगी रही है?
0: इसके अलावा सावधानी क्या है कि हम कोल्पा चलाते ही हैं।
1: हाँ,
0: तो उससे क्या होता है कि अब, लेकिन अब तो समय कोल्पे का निकल गया।
1: अच्छा,
0: फसल बड़ी हो गई,
1: बड़ी हो गई।
0: शुरू में कोल्पा चलाते हैं, उससे क्या होता है मिट्टी थोड़ी ऊपर की ढीली हो जाती है तो फटती नहीं है। और वो अब समय अब निकल चुका है।
1: हाँ,
0: अब तो हम यही मतलब कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है उसकी फसल की देखभाल करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि पानी पानी गिराता रहे और हमें ऐसा नहीं लगे कि फसल को कोई नुकसान हो। तो और विश्वास करता हूं कि ईश्वर सुनेंगे सबकी।
1: नहीं नहीं सुनेगा, क्यों नहीं,
0: और पानी बराबर गिराते रहेंगे,
1: बराबर गिरेगा। हाँ, अब सावन को महीनो है, देखो अभी तो शुरू होगी।
0: हाँ बिल्कुल, सावन में तो सावन के चेहरे पड़ते ही।
1: हाँ, वो तो आशा मन छोड़ ही नहीं सका कि वो पानी पड़े न, फिर धूप ही जाए, वो चेहरा तो पड़े ही जाए, और पढ़ने मंडी गया अभी देखे तो।
0: हाँ, और लेकिन एक बात है, जैसा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी।
1: हाँ,
0: इतना कम पानी गिरा नहीं है,
1: इतना कम
0: फिर भी पर्याप्त गिर रहा है अभी तक तो।
1: गिरी है
0: तो भविष्यवाणी के हिसाब से मतलब पूर्ति अच्छी हो रही है।
1: हाँ,
0: जो अच्छा संभावना लग रही थी कि पानी बहुत कम गिरेगा, लेकिन इतना कम नहीं गिर रहा
1: अभी। अच्छा है, नहीं अपना सारू। हाँ, तो अभी कई फसल ना में कई कीट पीट को प्रकोप या ऐसा कहीं तो नहीं मिली
0: विशेष इस वर्ष अभी तक तो है नहीं। और एक बात और है कि अगर इल्ली होती है, मच्छर तो ज्यादा होते नहीं है क्योंकि सब दूर फसल रहती है। मच्छर का विशेष प्रकोप होता है रबी की फसल में।
1: अच्छा। हाँ,
0: अभी इतना कम होता है। तो इल्ली अगर होती है तो एक बाय एक मीटर में अगर एक दो जगह पे इल्ली दिखे तो हमें कोई दवाई का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उससे इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन ज्यादा अगर है तो फिर हमको दवाई स्प्रे करना पड़ती है। और एक बात और है कि अगर हम जैविक दवाई का स्प्रे करते हैं तो वो हमको लाभकारी भी है क्योंकि कम खर्चा लगता है। लेकिन ज्यादा अगर किसी भी जीव का प्रकोप हो जाता है, इल्ली का या दूसरे कीट का, तो ज्यादा प्रकोप होने के बाद में फिर हमको रासायनिक दवाई का उपयोग करना ही पड़ता है।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जैविक दवाइयां हमारी जितनी भी है वो एक रिप्लेंट का काम करती है कि वो भगाती है कीटों को।
1: हाँ,
0: मारती नहीं है।
1: हाँ,
0: और मारने के लिए हमको रासायनिक दवाई
1: सहारा
0: लेना ही पड़ेगा।
1: हाँ,
0: और लेना पड़ता है।
1: सही है।
0: तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र खाचरोद क्षेत्र में तो अभी तक फसल अच्छी है और विशेष कोई कीटों का प्रकोप भी है नहीं।
1: अच्छा,
0: हर हाँ, साल के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में है फसल।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ,
1: भाई सब अच्छे जीरो है जो भी वीरियो है। तो गोवर्धन जी, अब एक बात आखिरी में, अभी तो मैंने पूछी ली बहुत सारी नरी सारी बात ना, पर तुम्हारे कहीं और भी हमारा श्रोताना का सारू कहीं कहना है तो बताऊ।
0: मैं सभी हमारे किसान श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि हम रोज खेत पे जाए, नौकर या हाली के भरोसे नहीं रहें, खेत पे जाए और खेत में घूम के देखें।
1: हाँ, हाँ,
0: कि फसल की क्या स्थिति है, कहीं कीट का प्रकोप है, किसी बीमारी का प्रकोप है या खरपतवार है, तो उस हिसाब से हमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस फसल को बचाना पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: तो हम खेत पे जाते रहें नियमित रूप से, सिर्फ नौकर या हाली के भरोसे अगर

कि क्यों नहीं मनोरंजन भी करता चला, और सावन को महीनों है तो अपनी सखी सहेली ने का साथ है जब मनोरंजन करा तो को आनंद ही दोगुनो ही जाए। तो चलो सुना प्रीति भार्गव को गायो यो लोकगीत।

प्रीति भार्गव अनसाथी नाको गायो यो लोकगीत सुनियो हमने। अब इका साथे ज अब जैसे कि हम बात कर ही रहा था खरीफ की फसल की, अब हमारा जो प्रदेश है मालवो उका में सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा बोया जावे। तो भाई बहनों इका में जो हमारा पास बखत बखत पर जो मौसम है उका अनुसार जो वैज्ञानिक सलाह ना आवे, चलो आज अपन वा भी जानी ला। हमारा पास जो सलाह वैज्ञानिक की साप्ताहिक सलाह आवे है उका अनुसार सोयाबीन का कृषक ना जो है उनका खास करके सूखा प्रबंधन का सारू सोयाबीन में डोरा कुलपा चलाते रहनो है, निराई गुड़ाई करता रहनो है। साथे डोरा करने का बाद 15 से 25 दिन की फसल में 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल अवशेष बिछाई ने मल्चिंग करनी है। जमीन में दरार पड़े जीका पेला स्प्रिंकलर टपक सिंचाई या परंपरागत सिंचाई करते रहनो है। उका बादे 20 दंड की फसल कदी हुई जाए तो उका में थायो यूरिया के 750 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से घोल बनाई ने पत्ती ना पे छिड़काव करनो है। भाई बहन और अति वर्षा हुई जाए तो उका से बचना का सारू खेत ना में जल भराव नहीं होने देनो है, पानी की निकासी की व्यवस्था करनी है। यह हमारे खास करके पानी से कम या ज़्यादा पड़ी जाए तो उका सारू करनो है। इका बादे रोग प्रबंधन का सारू, जैसे कि अभी कॉलर रॉट यानी कि गर्दनी सड़न जी के बोले हैं और राइजोक्टोनिया जड़ सड़न नामक रोग जो है उको संक्रमण देखने में आ रियो है। और इका नियंत्रण का सारू कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से हमारे फसल पे छिड़काव करनो है। वैसे पीला मोजेक रोग का लक्षण कदी दिखे तो उका में प्रारंभिक अवस्था में रोगग्रस्त पौधा ना जो रहे उनके खेत से उखाड़ी ने नष्ट कर देना है। और इका साथेज इका रोग के फैलाने वाली जो सफ़ेद मक्खी आवे उकी रोकथाम भी करनी है। साथे तना मक्खी की रोकथाम का सारू थायोमिथोक्सम लेमड़ा साए हेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या बीटा साय फ्लूथ्रिन और इमिडा क्लोरोप्रिट 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या एसीटेमिप्रिड 25% 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से छिड़काव करांगा तो उका से हम तना मक्खी से नियंत्रण करी सकांगा फसल ना को। ऐसे जो सफ़ेद मक्खी है उका से बचना का सारू किसान ना के एक सलाह है कि वी अपना खेतना में अलग अलग जगह पे पीलो स्टिकी ट्रैप जो आवे है उके लगावे, जिका से हम सफ़ेद मक्खी से भी अपनी फसल ना के बचे सकांगा। भाई बहन और किसान ना के या भी सलाह दे जा रही है कि वे खरपतवार नियंत्रण के का भी सभी उपाय जो भी संभव हो वे करता रहे। हाथ से निंदाई गुड़ाई कुलपा चढ़ानों का प्रयोग या जो भी है खरपतवार नाशक को प्रयोग जिनी अवस्था में हमारी फसल है उका अनुसार हमारे ये सब खरपतवार नियंत्रण का सभी उपाय करता रहना है। भाई बहनों और प्रकृति जो है उका अनुसार कभी जो भी है कभी वर्षा ज़्यादा भी होवे तो कभी कम भी होवे, लेकिन हमारे बहुत

अच्छा से सोची समझी ने जागरूक हुई के और कहीं समझनी पड़े तो अपना पास का कृषि विज्ञान केंद्र पे हम कृषि विज्ञान अधिकारी ना जो रहे उनसे वैज्ञानिक ना रहे उनसे सलाह मशवरा करी ने और उका बादे अपनी फसल में कई करनो है या जानकारी ली के और अच्छा से अपनी फसल की देखरेख करनी है। इका से हम जो कभी भी प्रकृति का कारण वर्षा का कारण जो हमारे हानि होने वाली होए तो हम उकसे बची सका, फसल में कभी कोई कीट या बीमारी हुई जाए उकसे बची सकांगा और सही प्रबंधन हम करी सकांगा। तो भाई बहनों और अपनी जानकारी या तो थी कि भाई सोयाबीन में हमारे अभी मौसम के देखते हुए कई करनो है, इका ऐसी जानकारी हमारा पास जब भी आवेगी तो हम तुम्हारे देता रहवांगा। अभी अपना कार्यक्रम की बखत में तुम्हारे जानकारी ना का साथ हम लोकगीत भी सुनाता रहवा जिससे तुम्हारो मनोरंजन भी होता रहे। तो सुना तृप्ति नागर को गायो यो लोकगीत।

तृप्ति नागर का इना लोकगीत का साथे तमसे अनुमति लेने की बखत आई गई है। मारी वाणी के दुआर विराम, राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज की एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
1: जी तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी

0: इन्हें कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सकें। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: तिवारी जी कैसे देखते हैं इसे आप?
2: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वो एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान है, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सके, इसे जीवंत कर सके, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सके, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
0: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है, जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जारी किया, जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया। और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है। और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है, और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों तक प्राप्त करने और पूछने का प्रयास करेंगे।
0: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझें,

0: तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
2: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है, और उसमें जो लक्ष्य हैं, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल के रूप में काम कर रही है और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है, और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
2: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं, कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: तिवारी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
2: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना, तीसरा गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना, पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो

0: हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से, इसके अलावा परिवारों को जोड़ना एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्यों में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है, जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। तो यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इको सिस्टम है जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे। हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCB की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति है आकाशवाणी बैतूल की।

श्रोताओं, हमारा देश विविधतापूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और सुंदर वन्य जीव, इन्हीं के बीच बसे हैं हमारे वन ग्राम और वनवासी भाई बहन। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है। यहाँ 46 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहारिया और भारिया प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में देश की जनजातीय जनसंख्या का लगभग 14.7% निवास करता है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उराव जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भील घरों की दीवारों पर पिथौरा चित्रकला एक पवित्र परंपरा है। जनजातियां प्रकृति पूजक होती हैं और वृक्षों के समूह में सरना देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो फसलों की रक्षा का प्रतीक है। हर त्योहार, विवाह और खुशी के मौके पर सामूहिक नृत्य करने का प्रचलन है। जनजातीय महिलाओं के लिए गोदना सौंदर्य और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। फसलों की कटाई के समय नई फसल को देवी देवताओं को समर्पित करने की परंपरा भी है। विभिन्न रंग बिरंगी पोशाकें और आभूषण इन्हें प्रिय होते हैं। जनजाति

0: भारतीय समुदाय के उत्थान के लिए और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और इस विषय पर आज हमारे साथ हैं श्री दुर्गादास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार। उइके साहब, आपका हम अपने आकाशवाणी केंद्र पर स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी वर्गों का विकास हो, उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लागू की गई है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है।
1: सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सौभाग्य है देश का कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आपका प्रश्न प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: तो मैं आपको बताऊं कि यह अभियान जिसे अब धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में विस्तारित किया गया है, देश के दूरस्थ जनजाति गांवों में समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने का यह राष्ट्रीय मिशन है।
0: जी,
1: यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा से शुरू किया गया है, जिन्हें धरती आबा के रूप में समूचे भारतवर्ष में जनजाति समाज के भाई बहन उनको सम्मान देते हैं।
0: जी,
1: धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना चालू की, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, इसके माध्यम से हमारे जनजाति समाज के 63,843 गांव कवर होंगे।
0: जी,
1: 5 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के हमारे भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जनजाति समाज के जीवन स्तर को सुधारने का एक पावन पवित्र अभियान है, आत्मनिर्भरता का आंदोलन है, सम्मान और प्रगति का ये एक अवसर है, और इसके माध्यम से समूचे भारतवर्ष में लगभग 12.5 करोड़ भाई बहन हमारे रहते हैं, जिसमें उनके समग्र विकास की ये आधारशिला के रूप में ये योजना है।
0: उइके जी, इस अभियान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से?
1: इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य है, जैसे 100% जो बुनियादी सुविधाएं जनजाति समाज के भाई बहनों को मिलनी चाहिए।
0: जी,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क है, बिजली है, पानी है, उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका कैसे विस्तार हो, और उनके कौशल विकास के साथ में उनको रोजगार की उपलब्धता, उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के युवाओं का कौशल विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, पोषण और सामाजिक सुरक्षा, सरल शब्दों में यदि कहें तो हर जनजाति गांव विकास का केंद्र बने, यही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है।
0: तो जैसा भी आपने बताया कि ये हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में इस अभियान का क्या योगदान है?
1: यह अभियान मूलतः जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके गरीबी में कैसे कमी हम लाएं, उनका कैसे समग्र विकास हो, स्थानीय स्तर पे कैसे रोजगार बढ़ाएं, और रोजगार के निमित्त तो वो निकटवर्ती जिलों और प्रदेशों में पलायन करते थे
0: जी।
1: तो उनका पलायन कैसे रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने में यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुमानित प्रभाव लगभग लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ, इसमें 63,845 गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और जनजाति युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
0: जी, हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी जनजातियां निवास करती हैं, और हमारे बैतूल की बात करें तो यहां भी जनजाति बहुल ये जिला है, तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर यह योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी?
1: पूरे देश में मध्य प्रदेश जो जनजाति जनसंख्या के मामले में अग्रणी राज्य है, यह अभियान मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लगभग 267 विकास खंडों के 11,377 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है।
0: और बैतूल जिले की यदि हम बात करें तो इस अभियान की कितनी प्रगति हुई है?
1: मेरा अपना संसदीय क्षेत्र बैतूल हरता हरसूद है, और बैतूल जिले में इस अभियान के तहत लगभग चिन्हित 554 ग्रामों में 12,104 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा

0: लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना की लगभग 82 समूह जल प्रदाय योजना ये स्वीकृत है। 3,90,321 करीब ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और 99 ग्रामों के विद्युत विहीन 617 घरों में विद्युत उपलब्ध कराई गई है। लगभग इसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से 10 नवीन छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं और बैतूल में इस योजना के अंतर्गत लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है।
1: उइके जी, बैतूल जिले में कितने लाभार्थी हैं जिनको पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का लाभ दिया जा रहा है?
0: इस अभियान से बैतूल जिले में लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीण भाई बहनों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।
1: अभियान के तहत जनजाति गाँव में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और ग्रामवासियों को कैसे प्रेरित किया जाएगा इसकी ओर आने के लिए?
0: इस अभियान के अंतर्गत मूलतः पक्की सड़कें कैसी बने, बिजली, सोलर व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां एवं स्कूल उन्नयन, आजीविका मिशन के तहत रोजगार, साथ ही ग्रामों को प्रशिक्षण, जागरूकता और सहभागिता के माध्यम से युद्ध स्तर पर प्रेरित किया जा रहा है।
1: और एक बात जो देखी जाती है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बुनियादी आवश्यकता है, तो क्या इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों को स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उनको भी बेहतर बनाया जाए?
0: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुख्य केंद्र बिंदु है और इस अभियान के तहत भवन विहीन एवं जर्जर शालाओं के प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। 10 नवीन 100 सीटर छात्रावासों की स्वीकृति लगभग प्राप्त हो चुकी है। 38 छात्रावासों में आवश्यकता अनुरूप मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही 23 छात्रावासों के अधीक्षक भवन निर्मित किए जा चुके हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकासखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, भवनों का निर्माण और जो ऑफिशियल जो स्टाफ है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उसकी भी उपलब्धता की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
1: उइके जी, एक और मुश्किल देखी जाती है कि जो हमारे जनजातीय भाई बहन रहते हैं वो कुछ पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, क्या पहुंच मार्ग बनवाए जाएंगे, किस तरह उनको विकास की ओर मोड़ा जाएगा?
0: आजादी के बाद तो लगभग 62 वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र लगभग सड़क कनेक्टिविटी से विहीन रहे, लेकिन हमारे आदर्श स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में आपने प्रधानमंत्री सड़क शहर ग्राम योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक गांव मुख्य सड़क से जुड़ चुके हैं और 7 संपर्क विहीन ग्रामों को 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भी अपने यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं
1: जी।
0: और आने वाले कल में आप देखेंगे कि कोई भी मजरा, टोला, गांव सड़कों से भी नहीं होंगे, इसको प्राथमिकता के साथ में इसको पूरा किया जा रहा है।
1: उइके जी, एक और बात आती है कि जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है वो इंटरनेट का युग है और बिना इंटरनेट के बहुत से काम करना ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं है और इसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र सुविधा से वंचित रहते हैं, तो इस अभियान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी और अन्य साधनों पर भी क्या ध्यान दिया जाएगा?
0: हमारा सौभाग्य है कि देश का डिजिटल इंडिया का हम सबको दिया है
1: जी,
0: और उस सपने को पूरा करने के लिए और इंटरनेट और जहाँ जहाँ भी इस तरह की विसंगतियाँ हैं उसको भी बहुत शीघ्र दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।
1: उइके जी, एक अंतिम प्रश्न की ये जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है इसका लाभ लेने के लिए हमारे जनजातीय भाई बहन कितने उत्सुक होते हैं?
0: आपको विदित हो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी बहन, हमारे परिवार की माता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है और खासतौर से जब यह अभियान के निमित्त आपका प्रश्न है तो यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं है
1: जी,
0: बल्कि यह जनजातीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये अनुपम, अद्वितीय और असाधारण प्रयास है। जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है।

0: हम सब उसमें सम्मिलित है कि देश के 140 करोड़ भाई बहन मिलकर हम 2047 तक हमारे राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये अंतिम सिरे पर जो भाई बहन है, समाज है, ये जब सर्वांगीण विकास इनका होगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन पाएगा।
1: ओके जी, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हम सबका ये सपना जल्दी ही पूरा हो। आज जो अपनी व्यस्तताओं के बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्रोताओं, डगर विकास की इस कार्यक्रम में आज हमने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की चर्चा की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत पारसमणि फिल्म से, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का, गीत रचना असद भोपाली की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
2: वो जब याद आए

कार्यक्रम में अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोता, वो हमने लिया है फिल्म धनवान से, युगल स्वर लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का। साहिल लुधियानवी के शब्द हैं और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाते हैं नक्श लियालपुरी का लिखा और खयाम का संगीतबद्ध किया दर्द फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा।

0: कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करे, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की

0: सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
3: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
5: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
4: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
5: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
4: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, today said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the leadership of the youth. He was addressing a program at Amrita Hospital in Faridabad after the national launch of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, launched by Prime Minister Modi. Dr. Mandaviya described the 100-week campaign as a nationwide people's movement aimed at mobilizing the youth for nation building. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high-frequency indicators during the April-June quarter. SBI research also noted that the global environment remains uncertain amid the West Asia crisis, but India's domestic economy has shown resilience. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Delhi government's Home Department issued a notification in this regard today. We have more from our correspondent.
6: Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. According to the notification, the scheme will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison occurring on or after the date of its notification. Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated that this scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission, will not only provide timely relief to the affected families under specified circumstances, but also further strengthen administrative accountability. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Dathia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. Postal ballots will be counted first, followed by the counting of votes recorded in EVM from 8:30 a.m. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all three states. The self-enumeration facility for Census 2027 has commenced in Assam from today. Citizens can now submit their household and individual details online through the dedicated portal se.census.gov.in. Our correspondent has the details.
7: The self-enumeration facility will remain available until August 16 ahead of the house listing operation and house census scheduled to begin on August 17. Citizens can register on the portal, enter household and individual details and submit the information digitally during the 15-day window. After the self-enumeration period ends, trained enumerators will conduct the house listing operation and house census from August 17 to September 15, during which the submitted information will be verified and confirmed. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
4: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said educational institutions must focus on creating an industry-ready workforce equipped with advanced employment-oriented skills. He was speaking after inaugurating the AI Center for Competency at Ramdev Baba University in Nagpur today. The Chief Minister noted that while artificial intelligence is expected to transform nearly 70% of jobs over the next 1,000 days, employment opportunities will continue to grow with changing skill requirements.
8: The world has started talking about the sixth industrial revolution now. The speed at which the technology is changing, the speed at which

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार का गाया अनुरोध फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर या

0: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
1: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था,
2: लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration.

0: it was beautifully played, and Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
1: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था,

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहाँ तक पहुँचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को संवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, जस्ट दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स डालना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB Baral, हिम महादेव बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज द फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, now melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja ta la la la la la ta la la la la la la la, this is melody, now is a brass beat, la la. This is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein

शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए, मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है, लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है, एक एक पंक्ति है और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जन करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
2: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945 एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलर अपसर्ज अक्रॉस द होल कंट्री इन सपोर्ट ऑफ नेताजीज सोल्जर्स एंड इवन इफ द ब्रिटिश ट्राइड टू You know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
1: Captain Ram Singh ki conducting baton ne hazaron dilon ki dhadkanon ko एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
3: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे।

0: आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मैस में जाते थे तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: नाम लिया। जय हिंद भैयो, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: पुस्तकों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: द ट्यून ऑफ शुभ सुख चैन की इज स्लाइटली डिफरेंट, देयर आर न्यूएंसेस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्यून ऑफ दिनेंद्रनाथ टैगोर्स जनगण मन। देयर आर मोर कोमल नोट्स दैट हैव बीन एडेड। The second verse of the Jana Gana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab ahvan pracharit shuni tab udar bani Hindu Bodh Shikh Jain Parashik Musalman Krishtani पूरब पश्चिम।

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
2: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
3: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर, अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन खयाल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपिएंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
2: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
3: एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya awards.
2: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibaddh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahe roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
3: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

गरे गरे मगा मगा मगा दम दम दम नी रानी मद मद गम गम गम गम नी रे ले गरे गरे गरे ता दानी दानी मद मानी दानी मद मद गम गम गरे ता ने जाय गम दानी रे दानी मद।

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनीन जाए सखी, जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी, जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बरनीन जाए सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: You are just listening to the vocal performance of Shri Sudhakar Devle ji in Raag Basanti Kedar. Shri Sudhakar Devle is concluding his program with Tarana in Raag Hans Dhwani, set to Tritaal with the lyrics Dara Dim Tadare Dani Dim.

0: में आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। अकंपनिंग हिम वर प्रमोद बोरगांवकर ऑन द हारमोनियम एंड उल्लास राजहंस।

0: on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.
1: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए